0: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network सिंध की आवाज.
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत जवाबित लागू हैं.
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
0: सुनते रहो GFM 90.4.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे।

0: हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
3: मातली आस पास की अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो ग़ुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-3241-230।
4: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे. इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस. बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस. निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं. हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879 0312-34-01-287. سکون، اعتماد، صحت مند زندگی ڈاں قدم.
4: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी. मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली. राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316.
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 0300-2962-435. एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली.
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो.
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल.
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
8: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी.
7: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
9: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतन ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
11: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
12: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing. Sona sirf zevar nahi, har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing 4 saal tak ki muddat ke sath. Bank Islami gold based financing se अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752640 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शरायत जवाबित लागू हैं।
13: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

सिंध में धाड़ेल राज हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी भी नाकाम। अगवा थियल केटीए न्यूज खानपुर महर जो रिपोर्टर अजीम सियाल बाजियाब न थियो। वारसन का एक करोड़ रुपया भुंग तलब। अजीम सियाल की गुजरियल डी पनोआकल के कचे में गाड़ी मिली हुई। डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठान अजीम सियाल की अगवा की तस्दीक कंदे चयो आए त केटीए न्यूज जो रिपोर्टर अजीम सियाल अगवा थियो आए। बाजाबी लाइ संजीदा आयो। ड्रोन कैमराउन जरिए मॉनिटरिंग शुरू कई है। घरू वजीर ज़ियाल अंजार ए आईजी सिंध साफ के अगवा जो नोटिस वरतो। डीआईजी सखर का रिपोर्ट तलब। केटीएन न्यूज खानपुर महर के रिपोर्टर अजीम सियाल के बाजियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज। मुख्तलिब शहर में मुजाहरा ए धरना। घोटकी सखर शहदादपुर रतोदेरो बख्शापुर भान सैदाबाद न्यू सैदाबाद ठिकराठो कश्मोर डहरकी जरवा रोहड़ी कंबर कोटड़ी राधण पनवाकल तंगवाणी ठारूशाह मुरीदशाख डोकरी मीरपुर साकरो अठ अठ मोरी रतोदेरो गंबट मदेजी मुबारकपुर सगियूं ड्रिब मेयर शाह बबरलो ए बियन शहर में कलम धरने एहतजाज कयो। साफ अजीम सियाल के बाजियाब कराने जो मुतालबो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आए त ईरान के शर्तन के नाकाबिले कबूल करार दई छड्यो। वधीक गालिन जो भी इम्कान जाहिर संदस चवण आए त उम्मीद आए त हलंदड़ हफ्ते ईरान से वधीक गालियों थींदियों। मुआदे ला ईरान जा शर्त कबूल जोगा ना इन खां अग ट्रंप दावा कई हुई था ईरान जल्द शिकस्त तस्लीम कंदो। जंग खत्म थींदे ही पेट्रोल भी सस्तो थी वेंदो। ईरान अमरीका सा बीहर जंग करण लाइ भी तैयार आए। सफारतकारी डां वापस अचण लाइ को भी जवाज ना आए। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राची चयो आए त तहरान जंग जो खात्मो चाहे तो। आबना अर्म्स खोलण लाइ भी तैयार आहियूं। अमरीका जंग खत्म करे असांजा मंजम असां सां बहाल करे ऐं पेट्रोल विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि। ईरान पारां समुंड में अमरीकी जाचूस अब्दोस खे हथ करण जी दावा वीडियोस बि जारी कई वई। ईरानी अख़्तियारनि मूजिबि अमरीकी जाचूस अब्दोस खे सालमत हालत में हथ कयो वियो। अमरीकी अब्दोस ईरान समुंड में बारूदी सुरंगनि बाबति जाचूसी करे रही हुई। पकड़ियल अमरीकी जाचूस अब्दोस जी मालियत $10 मिलियन आहे। पाकिस्तान ऐं आईएमएफ विच में अॼु बाज़ाबता ॻाल्हियूं शुरू थींदियूं। आईएमएफ जो वफ़द इस्लामाबाद पहुची वियो। ज़रिए जो चवण आहे त ॻाल्हियूं 30 जून ताईं जे अंगनि अखरनि ते थींदियूं। नाणे वारे वज़ीर सां गॾु इक़्तिसादी टीम बि ॻाल्हियुनि में हिसो वठंदी। पाकिस्तान तर्फ़ां सावरन वेल्थ फंड ऐं गर्दशी कर्ज़ में घटिताईअ ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। आईएमएफ खे करंट अकाउंट खसारे प्राइमरी सरप्लस सूरताल खां बि आगाह कयो वेंदो। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकनि में दहशतगर्दन खिलाफ़ फोर्सिस जो ऑपरेशन शोबान जारी। 4 ॾींहनि दौरान 71 खां वधीक दहशतगर्द मारिजी विया। आईएसपीआर मूजिब 21 सेप्टेम्बर खां कोटिया जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन कयो वियो। ज़ियारत ऐं भरपासे में दहशतगर्दनि जे थाकनि खे तबाह कयो वियो। रुगो ऑपरेशन शोबान में हेल ताईं 33 भारती दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। 23 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। 25 सेप्टेम्बर ते नौशकीअ में ऑपरेशन दौरान 11 दहशतगर्द मारिजी विया। मंडीअ में 6 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे मिक़दार में हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस वॾे इलाइक़े खे क्लियर करे माण्हुनि खे ख़तरे खां महफ़ूज़ बणायो। भारतीय सरपरस्तीअ में अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ दहशतगर्दी शहरनि ऐं अमुन लाइ ख़तरो आहिनि। पाक बहरिया जे आबदू

0: समुद्र में पहिरियों लाइव वेपन फायरिंग जो कामयाब तजुर्बो पीएनएसएम हंगोज ड्रिगे मुफासिले ताईं मार कंदड़ एंटी शिप क्रोज मिसाइल कामयाबी से फायर कयो वयो। आईएसपीआर मूजिब एंटी शिप क्रोज मिसाइल हदफ के कामयाबी से निशानो बनायो। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ लाइव वेपन फायरिंग जो मुशाहिदो कयो। नेवल चीफ हंगू आबदोस की जंगी सलाहियत अमली के पेशवारन महारत के साराओ। असाजा रस्ता रोकया पा वन 4 अक्टूबर से लॉन्ग मार्च जरूर कंदी। मोटरसाइकिल न तो साइकिल वेंदी, साइकिल भी न हूंदी तो पंध। ड्रोनदड़ शख्स नंढो हूं लॉन्ग मार्च जरूर थी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: मातली आस पास की आवाम खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
4: जी हा, 3135525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकानी चौक, मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि, थई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
5: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
3: जी हा, 3135-5786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
7: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उगरायूं भुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-879 and 0312-3401-287। शिफाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद जिंदगी।
8: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
11: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
10: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
11: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
10: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरत सुरतुनि ऐं ॿारड़नि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
12: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
11: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3141-230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This transcheck is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: गुरु संदस वार संजो चवण आए त करोड़ भुंग किथा आणींदासी कलम धन जो चवण आए त कलम धन जे अगवा जा वाक्या गणतीअ जोगा आहिनि सिंध हुकूमत उन जो जवाब ॾे

केटीएन न्यूज खानपुर महर जे रिपोर्ट रजीम सियाल जे बाजियाबी लाए कलम धणी सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहरन में मुजाहिरा ऐं धरणा चक बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाज कयो वियो। कलम धणी जो चवण आहे त ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते सहाफ़नि खे सज़ा ॾिनी पई वञे, अज़ीम सियाल खे फौरी तौर ते बाज़ियाब करायो वञे। IMF वफ़द अॼु नाणे वारे वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो। IMF मिशन चइनीस सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं कंदो। ज़रियनि जो चवण आहे त IMF जो मिशन स्टेट बैंक जे ज़रियनि मां मुतमैन आहे। IMF खे सऊदी अरब जे डिपॉज़िट बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे।

अमेरिका जंग खटी चुको आहे पर कार्रवाइयूं मुकमल तौर ते खत्म न थियूं आहिनि। अमेरिकी सदर फॉक्स न्यूज खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त मिडटर्म चूंडनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकण आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रही आहियूं। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयार आहे। सिफारतकारी ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबनाए हर्म्स खोलण लाइ बि तयार आहियूं। अमरीका जंग ख़तम करे असांजा मंझंदि असासा बहाल करे ऐं पेट्रोल विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि। मीर रज़ा केस में वॾे वज़ीर अदालती कमीशन जे मुदे में वाद वारी समरी मंज़ूर करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि वॾे वज़ीर समरी मंज़ूर करे वरिती आहे पर सिंध काबीना खां बि मंज़ूरी वरिती वेंदी। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जो मुदो गुज़िरियल ॾींहुं पूरो थी वियो हो।

मीरपुर माथेलो में पुलिस हिरासत में जवाबदार फरार थियण ते टे पुलिस अहलकार गिरफ्तार। पुलिस अहलकार इम्तियाज कलवर, एजाज गडाणी ए अल्ताफ शाह के गिरफ्तार कयो वयो। एसएसपी घोटगी अनवर खेतरान टिनी पुलिस अहलकारन के क्वार्टर गार्ड कयो। पुलिस मुकाबले केस में गिरफ्तार फारूक बोजदार पुलिस मोबाइल में फरार थी वयो। मेहड़ में नौजवान के कातलन की गिरफ्तारी लाए वारसन जो पाक किताब खणी प्यादल मार्च। मकतूल सज्जा चांडे के वारसन 3 किलोमीटर प्यादल मार्च करे प्रेस क्लब आडो धरणो आयो। वारसन जो चवण आए तो पुलिस कत्ल केस दाखिल कराने बावजूद जवाबदारन के गिरफ्तार ना करे सकी। जवाबदार मौतमार धमकियों दई रहा है, पुलिस भी जवाबदारन की धुर बणियल आए। सांगड़ में कत्ल थियल नौजवान के कातलन की गिरफ्तारी लाए एतजाज वारसन ए गोठाणन। हसन पठान के कातलन की गिरफ्तारी लाए चमड़ाऊ रोड बंद कर एतजाजी मुजाहरों कयो। वारसन जो चवण आए तो मंगली पुलिस नौजवान के कातलन की गिरफ्तारी लाए का भी कार्रवाई न कई है, जवाबदार गिरफ्तार कया वन। सिंध के मुख्तलिफ

0: हादसा टे ॼणा फोत हिकु ज़ख़्मी सखर में पुराणे सखर में लोडर रक्षा जो टकर सबब 8 सालनि जी अलीज़ा मसीह फोत हिंगोर जा में टालर जो मोटरसाइकिल खे टकर औरत बख़्तून फोत थी वई दादू में पुलिस मोबाइल कल्टी थियण
1: I think State Bank of Pakistan
0: में ज़ख़्मनि जी सट न सहंदे दम धणीअ वाले कयो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4:00 खां राति 10:00 ऐं हर आचर ते सुबुह 10:00 खां राति 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 03704-9495-244।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
10: सुनते रहो GFM 90.4।
11: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
12: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
12: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
12: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 03125252786।
12: जी हा, 2315-2575-786।
11: GFM रेडियो नेटवर्क
12: सिंध जो आवाज़।

मेरे दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से यार तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर्बाद और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला, तू है।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: I'll sit down here and then I'll talk and then I'll talk, I'll get it out.

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: बेस्ड फाइनेंसिंग।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
0: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो नथियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

जूं चइनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे अख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं। ज़रियनि जो चवण आहे त टैक्स नेट वधाइण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। IMF जो मिशन स्टेट बैंक जे ज़रियनि मां मुतमैन आहे। IMF खे सऊदी अरब जे डिपॉज़िट बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई। सिंध पुलिस धाड़ेल नाडो बेवस बणियल गुज़िरियल ॾींहं खां अॻुवा थियल KTN न्यूज़ खानपुर महर जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अञा बाज़ियाब न थियो। IG सिंध ऐं घरू वज़ीर सिर्फ़ नोटिस वठी वेही रहिया। हुकूमत भुंग बाबति मुगवी सहाफ़ीअ जे वारसनि सां राब्तो न कयो। धाड़ेलनि गुज़िरियल ॾींहुं अज़ीम सियाल जे वारसनि खे फोन करे 1 करोड़ भुंग घुरियो। संदसि वारसनि जो चवणु आहे त 1 करोड़ भुंग किथां आणींदासीं। कलम धणनि जो चवणु आहे त कलम धणनि जे अॻुवा जा वाकिया ॻणितीअ जोॻा आहिनि। सिंध हुकूमत हुन जो जवाब ॾे। KTN न्यूज़ खानपुर महर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा चक बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। कलम धणी जो चवणु आहे त ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते सहाफ़ीन खे सज़ा ॾिनी पई वञे। अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब करायो वञे। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कारवाइयूं मुकमल तौर ख़तम न थियूं आहिनि। अमरीकी सदर फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त मिड टर्म चूंडनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयारु आहे। सफारतकारी ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराची चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबिना अर्म्स खोलण लाइ बि तयारु आहियूं। अमरीका जंग ख़तम करे असांजा मंझंदि असासा बहाल करे ऐं पेट्रोल विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि। बलोचिस्तान में मज़दूरी लाइ वियल मुरीद शाख वासी 8 पोरियत अॻवा थियल पोरियत जो तालक मुरीद शाख जे ॻोठ मिठल डहर सां आहे। वारसन मूजिब पोरियत बचनि जो पेट पालण लाइ बलोचिस्तान में मज़दूरी करण विया हुआ। मज़दूरनि खे बाज़ियाब करायो वञे। अॻवा थियलनि में सिकंदर नौमान शमन नईम समीउ ख़ान आफ़्ताब बासित ऐं शाद अहमद डहर शामिल आहिनि।

0: मीर रज़ा केस में वॾे वज़ीर अदालती कमीशन जे मुदे में वाद वारी समरी मंज़ूर करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि वॾे वज़ीर समरी मंज़ूर करे वरिती आहे, पर सिंध काबीना खां बि मंज़ूरी वरिती वेंदी। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जो मुदो गुज़िरियल ॾींहुं पूरो थी वियो। मीरपुर माथल में पुलिस हिरासत मां जवाबदार फरार थियण ते टे पुलिस अहलकार गिरफ़्तार। पुलिस अहलकार इम्तियाज़ कलवर, एजाज़ गडाणी ऐं अल्ताफ शाह खे गिरफ़्तार कयो वियो। एसएसपी घोटकी अनवर खेतरान टिनी पुलिस अहलकारनि खे क्वार्टर घाट कयो। पुलिस मुक़ाबले केस में गिरफ़्तार फारूक बोज़दार पुलिस मोबाइल मां फरार थी वियो। मेयाड़ में नौजवान जे कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ पार वारसनि जो पाक किताब खणी प्यादल मार्च। मक़तूल सजा चांडे जे वारसनि 3 किलोमीटर प्यादल मार्च करे प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो। वारसनि जो चवण आहे त पुलिस क़तल केस दाख़िल कराइण बावजूद जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न आहे करे सघी। सांगड़ में क़तल थियल नौजवान जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज। वारसनि ऐं ॻोठाणनि हसन नवाज़ पठाण जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ चमड़ा रोड बंदि करे एहतजाज कयो। चवण आहे त मंगली पुलिस नौजवान जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ का बि कार्रवाई न कई आहे, जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
5: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
3: जी हा, 3315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुन जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: गालियूं थींदियूं IMF के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऐं दहशतगर्दीअ जी फंडिंग में रोकण बाबति आगाह कयो वेंदो.

0: बाद में शुरू थींदो। एस सीओ जे ईंदड़ इजलासनि ऐं सरगर्मियुनि जे तयारियुनि ते गौर कयो वेंदो। पाकिस्तान खे ईंदड़ साल एस सीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट सरबराह इजलास जी मेज़बानी करणी पवंदी। सिंध पुलिस धाड़ेल आॾो बेवस बणियल गुज़िरियल ॾींहं खां अगवा थियल केटीए न्यूज़ खानपुर मार जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अञा ताईं बाज़ियाब न थियो। आईजी सिंध ऐं घरू वज़ीर सिर्फ़ नोटिस वठी वेही रहिया। हुकूमत भुंग बाबति वे मगवी सहाफ़ीअ जे वारसनि सां राब्तो न कयो। धाड़ेलनि गुज़िरियल अज़ीम सियाल जे वारसनि खे फोन करे 1 करोड़ भुंग घुरियो। संदसि वारसनि जो चवणु आहे त करोड़ भुंग किथां आणींदासीं। कलम धणनि जो चवणु आहे त कलम धणनि जे अॻुवा जा वाकिया ॻणितीअ जोॻा आहिनि। सिंध हुकूमत हुन जो जवाब ॾे। केटीए न्यूज़ खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, नौशरो, फिरोज़, उबावड़ो, मीरपुर माथेलो, ठरी मीरवा, चक, बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाज कया विया। जरवार, खेरपुर, दोदापुर, कुंभ, दड़ो ऐं तलार में बि कलम धणनि जो एहतजाज। सखर में बि वकीलनि एहतजाज करे अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो। कलम धणनि जो चवणु आहे त ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते सहाफ़ीनि खे सज़ा ॾिनी पई वञे। अज़ीम सियाल खे फौरी तौर ते बाज़ियाब करायो वञे। अमरीकी सदर ईरान सां हिन हफ़्ते ॻाल्हियूं थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त उमेद आहे त अमरीका तर्फ़ां ॻाल्हियूं कंदड़ हलंदड़ हफ़्ते ईरान सां ॻाल्हियूं कंदा। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कार्रवाई मुकमल तौर ते ख़तम न थियूं आहिनि। मिडटर्म चूंडुनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयारु आहे। सफ़ारतकारीअ ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराची चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबनाए हरम्स खोलण लाइ बि तयारु आहियूं। अमरीका जंग ख़तम करे असांजा मंझमंद असासा बहाल करे ऐं पेट्रोल विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि। बलोचिस्तान में मज़दूरीअ लाइ वियल मुरीद शाखवासी 8 पोरियत अॻवा थियल पोरियतनि जो तालुक मुरीद शाख वेझो ॻोठ मिठल ॾहर सां आहे। वारसनि मूजिबि पोरियत बचनि जो पेट पालण लाइ बलोचिस्तान में मज़दूरी करण विया हुआ। मज़दूरनि खे बाज़ियाब कराए वञे। अॻवा थियलनि में सिकंदर, नोमान, शमन, नईम, समी, आफ़ताब, बासित, इंशाद ऐं ॿिया शामिल आहिनि। मीर रज़ा केस में वॾे वज़ीर अदालती कमीशन जे मुदे में वाद वारी समरी मंज़ूर करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि वॾे वज़ीर मुराद अली शाह अदालती जांच जी मुदे में वाद वारी समरी मंज़ूर करे वरिती आहे, पर सिंध काबीना खां बि मंज़ूरी वरिती वेंदी। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जो मुदो गुज़िरियल ॾींहुं पूरो थी वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
3: मोर को दिल्ली राणा मोर को
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो सेहत।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा, गोठन, शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-2525-786।
3: जी हा, 2315-2575-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूम सुने समात उनको मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। के समंदर साधु की बारिश और लाजुल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नीचे जागते समय से आसमां तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से तार दगम से खुशी तक, दिन से दर्द, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेरापुर मतली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डीज इन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके जनाब कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए क्यों और कैसे जरूरी है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल होगा ना आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि भाई जान ये जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है ये भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा वाली मजीद बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ प्रोग्राम के अंदर शेयर की जाती हैं। प्रोग्राम में आप लोगों के लिए फन होगा, एंटरटेनमेंट होगी, आप लोगों के साथ गाने होंगे जनाब मजी मजे के, और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ की जाएंगी बातें जो कि आप लोगों के लिए होने वाली है, आप लोगों के साथ ही होने वाली है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं तो वो इसलिए बताते हैं क्योंकि भाई बहुत सारे अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करके देखे होंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छा और एक प्यारा सा प्रोडक्ट लेकर आए हैं तो उसकी क्या क्वालिटीज हैं और क्या आप इस्तेमाल करने के बाद किस तरह से अपनी खूबसूरती में इजाफा लाने वाले हैं ये आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है वाकई जो बताना चाहिए भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अगर आप भी अपनी स्किन से लेकर थोड़ा सा परेशान है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के चेहरे पर आ चुकी है तो उन तमाम चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए और अपनी खूबसूरती को जरा बढ़ाने के लिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो होगा वो क्यों जरूरी है ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा मजेदार रहने वाला है और आपका हमारा साथ होगा जनाब पूरी पूरी 3 बजे तक। तो पूरी 3 बजे तक मैं आपको लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ, उसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो तमाम तो सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डीजे सदरा मुस्कान नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपके सदराव के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। चलिए जी रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में फन करने के लिए, प्रोग्राम में बातें करने के लिए और प्रोग्राम में डी

ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने हाल चाल बताते जाइए स्टूडियो लिसनर्स, अब देखिए फहालत कैसे ही आपकी हालत। उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबकुल मोर के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरे दो घंटों का। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, आके फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करते हैं जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा से कलाम यहाँ पर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ सुन लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो जनाब बताते हैं कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है। ओके सो साथ रहिए और साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: ये क्या बात है आप सुन रहे हैं वाई टेंशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं और आप लोगों को बताया जाता है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोग क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं और कितनी सारी आपको खूबसूरती मिलने वाली है जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगर आप मर्द हजरात खवातीन सारे लोग अगर हमारे साथ मौजूद है तो तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं और सारे लोगों के लिए जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बताते हैं तफसीलन बताते हैं लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं शामले प्रोग्राम होना चाहते हैं तो वो किस तरह से होने वाला है प्रोसेस वो जरा समझा देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को बताते हैं। ओके जनाब तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था। हाँ जी बिल्कुल आप मुझे बताएं दुनिया का पहला फोन जो था वो किस कंपनी ने बनाया था। मोबाइल के बारे में बताना है फोन के बारे में नहीं ठीक है। तो दुनिया का पहला जो मोबाइल फोन था वो किस कंपनी ने बनाया था। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 आपने सर्च कर देना है ठीक है। जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जैसे आप लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए हमारे साथ मौजूद है और आप भी प्रोग्राम का हिस्सा है। बिल्कुल ना प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपने क्या सोचा है इस्तेमाल कर रहे हैं या खाली प्रोग्राम सुनने वाली समाते हैं। तो भाई खाली प्रोग्राम सुनने वाली समाते मत बनिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले भी बनिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है ना ये बड़ी कमाल की प्रोडक्ट्स है। आप लोगों ने बेशक बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगाकर देखे लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मैं इतना क्यों बताती हूँ उनके बारे में क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स है जनाब जिसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और उसके साथ डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। ये डी स्किन के दो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है और जनाब ये क्या ही कमाल का इसका फार्मूला है क्या ही कमाल तरीके से इसको तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो बातें पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताऊंगी वो जरा गौर से सुनिएगा और जरा शोर से भी सुनिएगा क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों करने वाले हैं। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी इस तरह की हो चुकी है कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट लगाने से थोड़ा सा घबरा चुके हैं या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है कॉम्बिनेशन टाइप है आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई हम कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि हमारी स्किन खराब हो जाती है तो आपने टेंशन नहीं लेनी भाई वडा गोश नहीं है खाना छोटी नू ना नहीं कहनी बस आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लेना है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आप लोगों को जो कमाल के रिजल्ट मिलने वाले हैं ना वो बस देखने काबिल होते हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात चाहे आप खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है दिल खोल कर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा सकते हैं। और क्या होगा जनाब ये प्रोसेस के किस तरह से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो आपको पूरे प्रोग्राम में बिल्कुल जी नंबर्स बताए जाएंगे और नंबर्स के ऊपर आपने रब्ता करना होता है कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे और आप लोग उनको बताएंगे कि भाई साहब आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट तो वो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा देंगे। तो ये आसान सा सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है जिसको आपने बस प्रोग्राम सुनकर ही नोट कर लेना है और हमारे प्रोग्राम में साथ रहिएगा पूरे पूरे 3 बजे तक यहाँ पर आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। परवा हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले कहती है अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून आप भी हाल आहिनि तव्हां जा मां उमेद थी कयां तव्हां ठीक ठाक हूंदा आमीन सुमामीन जी जी। और शायर केसवर खरल हमारे साथ है शायर केसवर लिखती है अस्सलाम वालेकुम केसिया मैं ठीक हूँ कहती हूँ माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग शो थैंक यू वेरी मच शायर केसवर खरल। और फरवा कहती है आप ही अर्ज किया है दिल धड़कता है तो डर सा लगता है कोई सुन ना ले मेरी धड़कनों में नाम तेरा अल्लाह। लालू हमारे साथ है लालू भाई हेलो और आपने लिखा है कि नाइस शो थैंक यू वेरी मच लालू भाई। और हमारे साथ ही अर्ज मोहम्मद गोला भाई जिला जेकबाबाद से कहते हैं कि पसंद खान गोलो खान अर्ज मोहम्मद गोलो अजहर अली और मजहर अली गोलो जबरदस्त कंपेयरिंग लाजवाब प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच प्यारा भाई। अच्छा तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ठीकु आहे। दीदार अली बिरोही कहते सलाम आर जे सिद्रा के सी हो दीदार बिरोही फ्रॉम खान मोहम्मद बिरोही से। दीदार भामा ठीक आहे, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो, मज़े में आहियो। और अबू हनीफ अलबलोची हमारे साथ, गुड आफ्टरनून सिद्रा मैम, थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम कहते अबू हनीफ। और तारिक खान हमारे साथ मौजूद है, तारिक भाई कहते नाइस हो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। जैन अली लिखते हैं कि जो तुम्हें देख के भी किसी और को देखे वो एक तमाशा ही है, तालिबे दीदार नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम दिल से माई स्वीट बुआ जी, आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई जी। और जी शाजिया अली हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम शाजिया, वेलकम कहते हैं आपको भी। लिखती हैं कि आप ही अर्ज किया है, तुम्हें देखना मेरी आदत नहीं, अब मेरी इबादत बन चुकी है, जितना भी आपको देखूं दिल फिर भी कहता है एक बार और देखूं। अल्लाह। लालू हमारे साथ भाई कहते हैं नाइस हो, थैंक यू वेरी मच। और शाजिया कहती है शो लाइक और शेयर कर दिया है, बहुत शुक्रिया शाजिया। और फहीम भाई कहते हैं कि कदें भी तोते दवार दिलजान बूटबा, तू भली हली आ बल लुड़का आला तदहीं भी हुंदा, मता चई आजिया न थींदी। शेख अयाज वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम। अदर केरे अदर छा हाल आहे, खुश आयो सफ़र चाक सलेट कलम मस्जिद डबी। अदा असां कराची खां इस्लामाबाद पहुता आहियूं, वरी कुझु ॾींहं में कराची ईंदासीं, घुमण विया आहियो या कम जे सिलसिले में विया आहियो? ऐं ॾियो हाल अहिवाल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम साण खणी विया आहियो या फिर ईअं खाली विया आहियो? डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो बाबा, चाहे तव्हां किथे बि हुजो किथे बि रहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम पुछाईंदा बि रहो त किथे किथे मिलनि था। ऐं अगरि उते नाहिनि अवेलेबल त तव्हां नंबर ते राबितो करे उते बि अवेलेबल कराए सघो था। ठीकु आहे। अली रज़ा लगारी भाई हमारे साथ है, गोठ जाम खां लगारी से। अली रज़ा लगारी भाई वालेकुम अस्सलाम, और मैं ठीक हूँ कहते हैं, तमाम नाइस शो है आपका, मुझे पिरी जी तू अच्छा चले, आपने गाना लिखा है डेडिकेट अजहर लगारी, आकिब लगारी, आजम लगारी, मजहर लगारी, अनवर लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, सिस्टर सिद्रा भाई वालों को बोलो कि जाते हुए डी स्किन ब्यूटी क्रीम लेके जाएं, तमाम अच्छी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ तो ऐसा वैसा प्रोडक्ट तो नहीं बताऊंगी ना, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप सारे लोग इस्तेमाल कीजिए, तमाम भाई लोग तमाम बहने डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं, खूबसूरत से चेहरे को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। और नजीर भाई हमें सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, भाई को वेलकम कहते हैं। फहीम कहते हैं अदा फरवा खां पुछो फारवा खाए थी या न, फारवा अना कोन आया है, जदि मौसम ईंदी तो फरवा जरूर फारवा खाईंदी। दातल अहमदानी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ कहते हैं कॉपी सॉन्ग, हाँ जी बिल्कुल लगाते हैं आपके लिए। और ऐसे ही आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। टाइम हुआ जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, तो ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो ब्रेक ते पेड़ भी लाजमी हूँ आहे बाबा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया कोन मूंखे कॉमेंट में ॿुधायो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमाल करण जो इरादो कयो आहे या न इहो बि मूंखे कॉमेंट में ॿुधायो, ऐं किथे किथे मिले थी ऐं कोन थी मिले इहो बि तव्हां मूंखे कॉमेंट में ॿुधायो। जल्दी जल्दी ॿुधायो, मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई स्टेशन। डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30.
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
4: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो, पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु। इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैन कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
1: मातली आस पास की आवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा आवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125257866।
5: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम रेडियो नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मैरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाल्टेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाकई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे कि हम अगर देख लें हमारी बॉडी के लिए खाने पीने की कुछ चीजें वाकई बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, तो वैसे ही हमारी स्किन के लिए भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें या फिर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप क्यों करेंगे। ओके जी, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आप लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करना है और दोस्तों के साथ जरा हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया करें ताकि वो आपके जो दोस्त है ना वो भी जान सके और पहचान सके डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। और इसी के साथ साथ आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ ही साथ डायल करते रहिए वो नंबर जो कि आप लोगों को प्रोग्राम के अंदर बताए जाएंगे जिनके ऊपर राता करके आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएंगे। ओके हो गया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था। इस सवाल का जवाब दीजिए 888-1 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाइए। अच्छा, तो यहाँ पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों के साथ बात करें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जनाब एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हुआ है जनाब जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आपने जो इतने ढेर सारे प्रोडक्ट लगा लिए हैं ना उनमें ये एक अनोखा प्रोडक्ट अनोखा इस तरह क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ये मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार हुआ है और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जो है ना उन डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले ईजाद करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो केमिकल से पाक होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल एड नहीं हो और वो ऑल स्किन टाइप के लिए हो, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो तो उसके ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सके, तो ये आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि जनाब एक मेडिकेटेड फार्मूला है और साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ आपको दो रातों के इस्तेमाल से अच्छी खासी रिजल्ट्स देने वाला प्रोडक्ट है। तो अगर आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे जो कि आपको क्विक रिजल्ट दे सके, अगर आपके घरों में शादियां हो रही या फिर आपकी अपनी शादी हो रही है और आपको चाहिए ऐसा प्रोडक्ट जो कि बस आप लगाएं और आप चुटकियों में खूबसूरत हो जाएं, तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फाबोटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें एड की गई है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ एक नाइट क्रीम है बल्कि ये 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूले से मुराद ये कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन की गई है ना ये इसलिए है जनाब क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ना ये महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर एड की जाती हैं और पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे ना ये जो इतने करोड़ों तादाद में हमें प्रोडक्ट नजर आते हैं तो उन तमाम प्रोडक्ट्स में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की जो ना वो एडिशन की गई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी कोई अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई सेफ प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई जनाब प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए वो भी मुनासिब सी कीमतों में आपको मिले, तो ये आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यही खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे पर जो है ना वो फेशियल जैसा निखार लाते हैं, आपके चेहरे की स्किन ग्लो करती है, आपके चेहरे पर जो है ना ये रिंकल्स का खात्मा हो जाता है, आपके चेहरे पर जो ये डार्क सर्कल्स आ जाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि आपको परेशान कर चुके हैं तो वो ऐसे झट से गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती गुलाबों की तरह आप निखार करते रहे और आप महकते रहेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से होने वाला है। अगर आप भी 2 रातें डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार से रिजल्ट्स मिलते रहेंगे और ये कमाल जनाब उनसे पूछिए जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए और के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ जो है ना आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो डी स्किन का फेस वॉश भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो लोग भाई क्रीमों से थोड़ा अवॉइड करते हैं कि हम क्रीमें नहीं लगा पाते हैं, तो आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है, आप बस जाकर परचेज कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती को जरा एक नया सा एहसास दे सकते हैं। नई नई चीजें ट्राई करना अच्छी बात होती है, लेकिन चीजें वो ट्राई किया करें जो आपकी स्किन के मुताबिक हो और जो मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार की गई हो। तो क्या ही कमाल के प्रोडक्ट आपके लिए लेकर हाजिर है खिदमत जनाब, ट्राई करके देखिएगा। अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 0332738439। बड़ी 383 है 73 84 309। यो नंबर आहे 0312502590। बड़ी 312 50 25 970। ये नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजी करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सघो था। सो अवेलेबल करायो बाबा ऐं पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु रखो। तव्हां ख़्यालु न रखंदा त बाक़ी केरु रखंदो? तव्हांजी ख़ूबसूरती हाणे तव्हांजे हथनि में आहे। ॾिसूं त कॾहिं था तव्हां ख़ूबसूरत थियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। बिल्कुल जी, इस्तेमाल करते रहिए और मुझे जरूर बताया करें, जैसे आप बता रहे हैं कमेंट्स में कि भाई आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करें, और आप मैसेजेस में भी बता रहे हैं कि आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूर अपना फीडबैक दिया करें ताकि सुनने वाली समातों को पता चले कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके कॉमेंट्स ऊपर न चले जाए इसलिए मैं जल्दी से आपके कॉमेंट्स की जानिब आ जाती हूँ। नजीर भाई लिखते हैं कि जिंदगी का असल मकसद कायनात का असल शऊर हासिल करके बेसहारा इंसानों की जिंदगी में हौसला पैदा करना और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। बिल्कुल आपने सही कहा। और निदड़ी हमारे साथ मौजूद है, निदड़ी हमारी फिदड़ी कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी, वेलकम टू शो। तबियत कैसी है शोना मोना? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और चाचा खालिद कहती है बेटा सिडो अस्सलाम वालेकुम। कल सुना कि आप नहीं नहीं इतना जल्दी मैं शिकारपुर अगर जाऊंगी तो 4-5 दिन तो रहूंगी ना, वो कल थोड़ा सा ऐसे बस था कि कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से नहीं आ पाए। और आपने गाना लिखा है, वैसे आज एक बैड न्यूज भी आप लोगों को सुनाऊंगी, वो ये कि मैंने जैसे ही आप लोगों के गाने डाउनलोड करने के लिए डाउनलोडर खोला तो उसमें थोड़ा सा मसला था, टेक्निकल इशू था, एरर आ रहा था, तो इसी वजह से शायद आज आप लोगों के गाने नहीं चल सकेंगे। मेरे लिए तो गुड न्यूज है पर आप लोगों के लिए बैड न्यूज है, तो बस जरा हौसला कीजिएगा, कहीं आप बेहोश ना हो जाए कि आज आपके गाने शायद ना चल सके प्रोग्राम में। अच्छा, उन्होंने अलावा शाजिया अली हमारे साथ मौजूद है, आपने भी लिंक शेयर कर दी है। और निदड़ी क्या कहती है, लिखती है कि ये टॉपिक तो ओल्ड लोगों के लिए है, हमें क्या पता। भाई आपको पता होना चाहिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए मेरी शोना मोना। और किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा स्मार्ट आयो आ, तुम भी आयो आही या भूत आमा, बिल्कुल सरासर आयो आया ता ॾिसी सघो था। ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो कोन, मूंखे लाज़मी ॿुधाए वठिजो। और फहीम भाउ तव्हां टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे, ठीक हो गया। दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माई स्वीट ब्यूटीफुल आर जे चंदा जानी, आप कैसी हैं? मैं बहुत खूबसूरत, आप बताएं आप कैसी हैं? कहती की दुआएं आपके लिए हैं, मेरी दुआ है की अल्लाह पाक आपको वो सब दे जो आप दुनिया और आखिरत में चाहते हैं। मेरी दुआ है की अल्लाह पाक आपको मुस्कुराने की इतनी वजूहत दे की आप पिछली तकलीफें भूल जाए, आमीन। और कहती की मेरी दुआ है की अगले आंसू आपकी आंखों से खुशी के आंसू आए, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ऐसा मुस्तकबिल दे कि आप माजी के सारे गम भूल जाए, अल्लाह पाक आपके लिए हर काम में आसानी पैदा करे, आमीन आमीन सुम आमीन। सारे लोग आमीन बोलिए, भी देखे कितनी प्यारी दुआ दी है हमें निदड़ी ने। और दूसरी निदड़ी ने दो निदा है, ये दर्दे दिल का नाम भी निदा है। और चाचा कहते हैं कि बहुत कुछ सोच रखा है बेटा से जो हमने डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो वो तमाम चीजें मेरे साथ शेयर कीजिए, आपने क्या क्या सोचा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। अख्तियार अली गबर भाई हमारे साथ हैं और आप हमें सुन रहे हैं जी, विलेज मोहम्मद उस्मान से भाई को वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं कि तू जो आजकल के बार बार के टॉपिक खबर आए, अच्छा यानी कि तव्हांखे जवाब अचे थो, हाँ पर ऐसा निदड़ी के तो नथो अचे, यानी कि निदड़ी बार बार खां भी चटो। सो आप मुझे बताइए टॉपिक का जवाब क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ मोहम्मद जमान भाई कहते हैं टॉपिक जो जवाब देने हुआ है, ओके। और मीर मोहम्मद ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं? और जैन अली आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया जी। महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, गुड आफ्टरनून मैम आरजे, वेलकम सर। किशोर भाई कहते हैं आज टॉपिक पे अच्छा कहते हैं टॉपिक ही रख, चलो ठीक है ये टॉपिक रखूं था। बाबा टॉपिक चेंज कयो वने तो पर बे जको कलाक मिंदासी ने तो उन में तामरी ने टॉपिक जो जवाब दे जो तो एक इंसान के कहीं चीज जो गुरूर हुंदो आहे हुस्न जो पैसे जो या बियो कुछ वरी छातो थी सके हुस्न ही पैसो ना जेंदे इंसान मस्ती कंदो आहे सो तामो के बुदा एक इंसान के गुरूर आखिर कहीं चीज जो थी सके तो हुस्न जो या वरी पैसे जो बियो वरी दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो भी थी सके तो सम सेज आई एम स्वीटी बिल्कुल पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए आप मुझे कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे नहीं भाई, वो मुझे मुजरम लगते हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाते। अरे मुजरमों को सजा दो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों नहीं लगा रहे।
1: बिजली भरी है तेरे अंग अंग में, जो तुझको झूलेगा वो

0: आज कुछ लेगा वो चल जाएगा।
1: जादू है ऐसा तेरी नजरों में, पत्थर का दिल भी
0: पिघल जाएगा। रम पम पम पम रम पम पम पम
1: जो तुझको छूएगा वो
0: जल जाएगा।
2: अरे भाई ये हुसन आपको मिला है, ये मेहरबानियां है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और मुझे बताइए आप भी लगा रहे हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद ला देगा जनाब। आप इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि लोग आपसे मुड़ मुड़ कर पूछेंगे कि भाई बताएं तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताइए ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का।

0: पत्थर का दिल बिखर जाएगा
1: जो तुझको छुएगा वो जल जाएगा।
0: हाँ बाबा गाल दो सिंधी।
1: ना रोकना
0: ना टोकना,
1: हम जैसे हैं हमको तुम रहने दो ना।
0: हाँ जी
1: जो दिल पड़े होंगे खड़े हमको अपनी राहों।
0: गाने इतने अच्छे लगाती हूँ कि मैं तो गाने में मस्त हो जाती हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स कौन पढ़ेगा, तो मैं ही पढ़ूंगी। वापस आ जाते हैं जी, और हमारे साथ यहाँ पर सुनील कुमार महाराज कहते हैं दी स्किन क्रीम अवेलेबल। सुनील कुमार जनरल स्टोर कंडियारी। ओके जी, जितने भी लोग हमें कंडियारी वाले सुन रहे हैं वो सुनील भाई के जनरल स्टोर से जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं, तो जाइए और परचेज कीजिए। हमारे इरफान सियाज साहब कहते हैं गुड शो मैम, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा मीर मोहम्मद बिरोही भाई, थैंक यू आप हमारे साथ हैं। अब्दुल रजाक कुंभर भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद कुंभर भाई कहते हैं बहन सिद्रा कैसी हो, बिल्कुल चाक को हाथ सफा चाक को स्लेट। और कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मोहम्मद खान में इस्तेमाल कर रहा हूँ या मोहम्मद खान इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा चलें ठीक है, सब इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिल रही है तो जो नंबर आपको बता रही हूँ ना उसके ऊपर रابطہ जरूर कीजिएगा। رابطہ करने से ये होगा फायदा कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भाई हम कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर से इजीली जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं। फरवा हमारे साथ आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया जी। फहीम भाई कहते कहता लाड़काना में पाकिस्तान चौक ते फारवन जो जूस एंड फारवा मिलन था, फरवा के बुधायो हेडे होडे नवने फारवा वठण। अच्छा सही आ बुधो नो फरवा। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जी स्किन वाह वाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम चो बाबा सजो नालो वो इज्जत एहतराम डी स्किन ब्यूटी क्रीम पूरो नालो वठना तरी तव्हांखे दुकानदार बि ॾींदो, अगरि तव्हां अधु नालो वठंदा दुकानदार कंफ्यूज थींदो, पोइ तव्हांखे कोई बि प्रोडक्ट ॾेई छॾींदो। तव्हां पूरो नालो वठो, तव्हांखे ख़बर हुजे त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां जेको आहे न डॉक्टर माई जो फोटू आहे। इस्तेमाल करती रहिए। और अख्तियार अली गब्बर भाई बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद यूसुफ पंवर भाई हैं गोट अच्छा मीरपुर, बेहतरीन प्रोग्राम सलामत रहो। थैंक यू प्यारा भा, तव्हांजो गोठ मूंखे समझ में न आयो सो मोहबत आहिनि सोणे भाजू प्रोग्राम ॿुधो पिया। और फरवा थैंक यू सो मच, तव्हां मुमताज़ मलिक जो गानो ॿुधो था, ॿुधण चाहियो था, मां कोशिश कयां थी हलाईंदसि गानो। और हुन खां अलावा चाचा ख़ालिद कहते हैं असां ग़रीबनि जा कॉमेंट मथे हलिया विया, अदा साईं कोन विया न अदा साईं, तव्हां सबर कंदा कयो थोरो अदा साईं।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141
3: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
0: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 0300-2962-435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
5: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रतु अचणु सख़्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदो कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287 सुकून एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि

0: शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हा, 3135525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सगरन मीरापुर मातिली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं तो जल्दी से मुझे बताइए और मुझे ये भी बताइए कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल कराने हैं और कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो क्या ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को मिलने वाली है, क्या ऐसी खूबसूरती जो कि आपको मिलेगी जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे।

लेकिन ये जो प्यारा गाना मैंने लिस्ट में लगाया, ये गाना किसको डेडिकेट जाने वाला है? ये जी गाना डेडिकेट जाएगा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी फरहान गोलो, वो हमें सुन रहे हैं और हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं। फरहान भाई, आपको वेलकम कहते हैं और आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये गाना आपको डेडिकेट जाता है। इंजॉय कीजिए और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।

हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वो बिल्कुल आपको कह रहे हैं भाई आप भी ढूंढिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं हुई तो आप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं. जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर आप रब्ता करके इजिली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सकते हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर मिल रही है, डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो आप फेस वॉश को भी अवेलेबल करा सकते हैं. तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए और खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए क्योंकि आप भी डिजर्व करते हैं खूबसूरत होना. अच्छा यहाँ पर सवाल बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएं कि एक इंसान को किस चीज पर ज्यादा गुरूर होता है, अपनी खूबसूरती पर या फिर पैसे पर. अच्छा कॉल्स लेना मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की. कॉलिंग नंबर है जनाब 0333221322 एंड 88.

0: के नाम से यहाँ पर फर्स्ट कॉलर हम देखेंगे. फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है देखते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज अचे पियो? शायद इस कॉल में थोड़ा मसला था. अच्छा, कॉल करें तो इस जगह पर जाकर खड़े हो जाएं जहां पर आपको लगता है कि भाई यहां पर हमारे यहाँ नेटवर्क सही आता है. और कॉलिंग नंबर है 0332132288. नेक्स्ट कॉलर की जाने बातें देखिए कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम, केयर मौजूदा? ओके, ठीक आयो अदा? मजे में प्रोग्राम बुधो पे प्यारा भा. अच्छा, केड़ो प्रोग्राम कंदी आया? नालो बालो अचे तो प्रोग्राम जो?
1: प्रोग्राम जो नालो है गाय के बीटी क्रीम.
0: वाह वाह, आई बियो बी केड़ी क्रीम जे बारे बुधाईंदी आया? वाइट एज तां से न में याद करियो क्रीम तां का विसरी वया लगे तो. चलो ही भाई, पान में भा भेण आहिनि, तव्हां वाइटिश वठो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो. सही
1: आहे
0: भा डी स्किन आहे ऐं भेण वाइटिश आहे. जी यादि करे वठो. ओके, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ. मोरो खे तव्हां कॉल कई, सुहिणी भाजी कॉल हुई माशाला. वाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा आहिनि ऐं तव्हां कहिड़ी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो पिया मूंखे लाज़मी ॿुधाईंदा कयो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई आहे कोन इहो बि ॿुधायो. हीअ वारी कॉल बि वठूं था, ॾिसूं कहिड़े रस्ते सां. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम, केरु मौजूद आहे? वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम खां अॻिते न वधंदा त असां कॉल कटे छॾींदासीं. नेक्स्ट कॉलर आहे जी, केर ॾिसूं था. हैलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: हैलो,
0: हैलो,
2: हैलो,
0: आवाज़ अचे थो?
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, केर मौजूद
2: आहे?
0: मुंहिंजो आवाज़ वरी नथो अचे? इहे तो लेटेस्ट न्यूज़ हो गई. अदा, तव्हांजो आवाज़ त सफ़ो भलो पियो अचे, ऐं काश मुंहिंजो आवाज़ बि तव्हां वटि भलो अची. हा, ऐं कॉलिंग नंबर जनाब 0332132288. नेक्स्ट कॉलर ॾिसूं था केरु असां सां गॾु आहे. हैलो जी, अदा तव्हांजी कॉल लॻी वई आहे. इतने मसरूफ लोग भी होते हैं भाई, कॉल करके भूल ही जाएंगे भाई हमारी कॉल तो लग गई है लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे. ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ये आप लोगों से हम जानेंगे. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल क्यों जरूरी है ये तो मैं वैसे ही आप लोगों को बताती रहती हूँ. तो नेक्स्ट कॉलर हम पिक कर लेते हैं, देखें कौन मौजूद है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
3: हेलो,
0: हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, केर मौजूदा?
3: हेलो,
0: हेलो जी, आवाज अचे तो? लॻे थो असांखे हाणे स्टूडियो पंहिंजो चेंज करणो पवंदो. आवाज़ अचे थो? हैलो भाई, अब लग रहा है कि हमें अपना स्टूडियो चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि लोगों की आवाज सही आ रही, अब हमारी आवाज नहीं जा रही है. ये मसला था जो हमें लगता था कि भाई फोन चेंज करने से ऐसा हो सकता है कि

0: लोगों की आवाज सही आ जाए, लेकिन ये हो गया कि भाई लोगों की आवाज तो सही आ रही है लेकिन अब हमारी आवाज नहीं जा रही है। ये क्या लॉजिक है भाई, चीज समझ नहीं आ रही। ओके सो कॉलिंग नंबर 0333213288। अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर सही जगह पर जाकर कॉल कीजिए ताकि भाई आप लोगों की जो आवाज है ना वो यहाँ पर सही आ सके और आपको मेरी आवाज भी सही मिल सके। नेक्स्ट कॉलर देखें कौन हमारे साथ मौजूद है। जी हेलो। हेलो जी।
1: हेलो
0: जी, आवाज अच्छी दो ब्रो। लग रहा है कि भाई अब ये कोई कश्मीर का मसला बन चुका है, अब कॉलें शायद प्रोग्राम में लाइव लेना, तो हम देखते हैं इस चीज को जरा अब क्या करना चाहिए। ये आवाज उन लोगों की नहीं आ रही थी तो फोन चेंज किया, अब हमारी नहीं आ रही तो हम स्टूडियो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यही हल मुझे नजर आ रहा है। वेल देखते हैं क्या करना चाहिए इस चीज का। वैसे तो हाँ जी, प्रोग्राम में कॉल्स लेना चाहिए, ये कहा गया है जरूरी है कॉल्स लेना प्रोग्राम के अंदर, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं कॉल जो है ना वो थोड़ी अवॉइड करती हूँ प्रोग्राम के अंदर। वेल यहाँ पर आप लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे ही नहीं वो जरा मुझे बताइएगा, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हुए हैं या फिर नहीं ये भी आप मुझे बता दिया करें, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला चुके हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए भाई, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है, और सबसे बेहतरीन बात ये मेडिकेटेड फार्मूला है। तो मेडिकेटेड फार्मूला है तो भाई कोई टेंशन की बात ही नहीं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। अच्छा मेरे पास एक गाना है तो साथ साथ हम जरा गाना भी सुनेंगे। ये गाना है जी एआई का गाना, तो एम ही आकर कोई ना बोले इंडियन गाने लगा रही हो, नहीं भाई एआई का गाना है तांबा तांबा। और इसी के साथ साथ फरवा कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर हुसन पर बड़ा गुरूर करते हैं। अच्छा चाचा आपका जो दूसरा टॉपिक का जवाब था ना वो ऊपर चला गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया। और किशोर भाई कहते हैं कि शुक्र है मुझे नाले जा पैसा कौन था हलन न था मानू हु भी रोड थे ओछलना गाल में दम आवे से पोसा अमीर हो जाऊंगा

अच्छा वफा अब्दुल वहीद जतोई भाई, आपको भी वेलकम के थे, स्टिकर्स सामने छोड़ दिए जी, बहुत शुक्रिया। इस वजह से लोगों के कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, तो स्टिकर्स थोड़े अवॉइड किया करें, सलाम दुआ लिखा करें, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया करें या फिर पूछा करें। और किशोर सुमाटू गोपांग, आपने जो है ना वो लिंक शेयर कर दी है, तो आज लिंक में जरा एरर आ रहा है, तो ये मुझसे प्ले नहीं हो सकती है, तो किसी के भी आज गाने नहीं प्ले होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। और शाजिया अली कहती है हानी हानी क्या कह रही हैं? एहसन अली भुट्टी भाई, आपको भी वेलकम हो गया, प्रोग्राम में मौजूद है। निजाम भट्टी कादरी भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और भाई मटियारी खां ससगर मौजूद है, मटियारी में भा तहां के डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिले पई हर के था, तो तहां वठी सगो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी सगो था।

अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर किया है नहीं ये मुझे जरा बताया करें और पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें क्योंकि शेयरिंग जो होती है ना उससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों को हम बता पाते हैं कि भाई आप भी जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती पे ये जो प्रॉब्लम्स आ चुके हैं ना आपके उनको हटा सकते हैं, खूबसूरती को हमेशा महफूज रख सकते हैं क्योंकि जी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर आ जाती है जी चमक ग्लो और आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई वाकई अब हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं दिल खोलकर क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूले जो होते हैं उसे हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो या फिर कॉम्बिनेशन टाइप ही क्यों ना हो। तो मर्द हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सब लोग कर सकते हैं।

0: फजल भाई ये गाना आपको डेडिकेट जाता है, आपको पसंद आते हैं ना ऐसे गाने। सो आपको डेडिकेट। टाइम हुआ है जरा यहाँ कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यू जाकर यू वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग।
1: सोना घर की अमानत होती है। इस्लामी लाया पाकिस्तान का कंप्लायंट 50 साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752644 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो

0: जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
0: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

नानी छोथा कुरको बाबा छोथा कुरको नानी छोथा कुरको बाबा छोथा कुरको न कुरको दिल वडी माल के हो बिल्कुल जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है अगर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ साथ अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको नंबर बताया जाता है प्रोग्राम के अंदर ताकि आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सके। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने के लिए आपने जो इन नंबर के ऊपर रब्ता जरूर से करना होगा।

डायल कयो 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50 25 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309 ॿुड़ी 332 73 84 309 ही ॿई नंबर्स आहिनि तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते

डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न अवेलेबल कराए सघो था ऐं अवेलेबल कराईंदा त इहा आसानी थी वेंदी बाबा तव्हांखे काॾे शहर न वञिणो पवंदो ऐं तव्हां इहो न सोचींदा त हाणे असां किथां वञी करे जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघूं था बाबा तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ॻाल्हि ई ख़तम थी वेंदी बसि उतां तव्हां वञी ईज़ीली वठी सघो था जो आप मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इज़ाफ़ा ला सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये ख़ास बात है जनाब की डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इस्तेमाल करने के बाद आपको इतने प्यारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे। तो पहले भी लगाइए, अभी लगाइए, देर नहीं हुई, जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करते जाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज तो आप बिल्कुल ही जानते हैं जनाब की डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है। तो मेडिकेटेड फार्मूला जो है ना उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना बिल्कुल उन्होंने ये फार्मूला तैयार किया है। तो कोई टेंशन की बात ही नहीं कि भाई कोई क्या मसला सेंसिटिव स्किन के ऊपर हम लगाएंगे तो हो जाएंगे या कोई भी हम प्रोडक्ट नहीं लगा पाते क्योंकि हमारी स्किन जो है हमें मोकल नहीं देती है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में आप शामिल कर लीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा और आपकी स्किन जो है वो साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो जाएगी, आपकी शख्सियत में जो है ना वो ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में आप जनाब एक इजाफा कीजिए, छोटा सा इजाफा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐड कर लीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के फौरन बाद ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, तो ये चीजें भी आप जो है ना वो याद रखा करें क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो भाई आपको मिलेगी फेशियल वाली जो है ना रिजल्ट्स। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई हम कोई फेशियल इस्तेमाल करें क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है। इसके अंदर जो है ना ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना इन्होंने भाई ये प्रोडक्ट जो है ना इसकी 100 गुना जो है ना वो पावर बढ़ा दी है और आपके चेहरे पर अब इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, निखार आएगा कि जब आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको मिलेगा परफेक्ट सा निखार। तो ये कमाल होगा जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। और डी स्किन का फेस वॉश अगर हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हो चुका है क्योंकि कई मरतबा कुछ लोग जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि भाई हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है, ये फेस वॉश नहीं मिल रहा है। तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए, बाकी तो अवेलेबल होता जा रहा है। तो फेस वॉश जो है ना ये भी बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अवेलेबल करा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन का फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, इसके अंदर हाइलोरोनिक सीरम एड किया गया है जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे की स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डीपली क्लीन करता है और आपके चेहरे की स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखता है। तो डी स्किन का फेस वॉश लगाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, दोनों चीजें लगाइए और खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, हम ये वाला गाना सुनेंगे और आप मुझे बताइए एक इंसान को गुरूर किस चीज पर होता है, अपनी खूबसूरती पर या फिर पैसे पर?

की बेस्ट आज शहजादी सिस्टर सिद्रा कैसी हो? मैं बहुत अच्छी खूबसूरत, तुम बताओ कैसी हो? यदि और बताओ, ये तो नहीं बताऊंगी। और कहती सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ओ

अच्छा एक शायरी है तो जरा हम वो भी शामली प्रोग्राम कर लेते हैं, लगे हाथ शायर सुना फरमाते हैं, सुनो जाना उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि मैं तुम्हारा मोहसिन। उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि मैं तुम्हारा मोहसिन। लोग सदियों की खताओं पर भी खुश हंसते हैं और खिलते हैं, हमको लम्हों की वफाओं ने उजाड़ा मोहसिन। जब हो गया हो यकीन कि वो पलट कर नहीं आएगा, गम और आंसुओं ने दिया दिल को सहारा मोहसिन। वो था जब पास तो जीने को भी दिल करता था, वो था जब पास तो जीने को भी दिल करता था, अब तो पल भर भी नहीं होता गुजारा मोहसिन। उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको खोना भी कैसे गवारा मोहसिन। हमने गजलों में तुम्हें ऐसे पुकारा मोहसिन, जैसे तुम हो कोई किस्मत का सितारा मोहसिन। अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे जाना, अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे मोहसिन। वो भी क्या दिन थे कि तुझको भी संवारा मोहसिन, अपने ख्वाबों को अंधेरों के हवाले करके हमने सदका तेरी आंखों का उतारा मोहसिन। हमको मालूम है अब लौट के आना तेरा, हमको मालूम है अब लौट के आना तेरा, अगर नहीं मुमकिन मगर फिर भी खुदारा मोहसिन। हमको रुखसत की घड़ी तक भी ना समझे, सांस देती रही हिजरत का इशारा मोहसिन, सांस देती रही हिजरत का इशारा मोहसिन। उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैं तब तब ये बताया कि मैं तुम्हारा मोहसिन, कि मैं सिर्फ तुम्हारा मोहसिन।

क्या ऐसा हो सकता है वाकई कि इंसान जो है वो जैसे पहले था वो हमेशा वैसा ही रहता, या उसने हमेशा वैसे ही रहने की ये कसम खा ली हो? लेकिन मुझे ये लगता है कि वक्त जैसे गुजरता जाता है इंसान भी बदलते जाते हैं, तब्दील होते जाते हैं। कुछ कमियां पेशियां तो हर इंसान में होती है, लेकिन हाँ, एक इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रह पाता। आप बताएं खूबसूरती के मामले में क्या सोचा है? फेस स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे? नहीं। अरे भाई लगाइए। चाचा खालिद कहते ही अच्छा टॉपिक का जवाब दिया, ठीक है, और कहते हैं और सुनाए क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया, आप बताएं अपने। महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ है भाईजान, बहुत शुक्रिया। गोट मोहम्मद तैयब थे हाँ भी बुला थे वो भाई शो तुम्हारा जो लाजवाब है, थैंक यू। और गोट गुलाब खान लगारी से साबिर लगारी सुल्तान लगारी रिजवान, गोट मोहम्मद तैयब थे हाँ भी बुला थे वो भाई कहते तुम्हारा जो शो लाजवाब है, थैंक यू प्यारा सोना भाई। स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कौन है? अच्छा नरेश, नरेश भाई हमारे साथ है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया कहते हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स चॉइस, थैंक यू प्यारे भाई। किशोर भाई कहते हैं तुझा गाना शो के बेहतर करना है न, एनर्जी पैदा करना है न, डांस करने ते मजबूर करना है न, ये न। आकिब जरवार हमारे साथ है भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। निजाम भट्टी कादरी कहते हैं मिलावट के दौर में अगर असली जहर चाहिए तो वो आपको सिर्फ लोगों के दिलों में मिलेगा। क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया। और हिदायतुल्लाह कहते हैं स्टूडियो चेंज नहीं, मुल्क चेंज करो। हाँ वैसे माइक भी चेंज हो सकती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया नहीं। और ये हमारे साथी जी रुखसार मरी मिरपुर खासी में सुन रही हैं, कहती हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच रुखसार मरी, और आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं जी मलिक जफर, मलिक जफर हमारे साथ हैं जी, कहते हैं ओके थैंक यू। अच्छा अबू हनीफ लिखते हैं कि मर्द का गुरूर सिर्फ एक वफादार औरत होती है, या तो तमा बिल्कुल सही गाल कही। अच्छा नेक महामन पालारी भाई नूरिया बासी में सुन रहे हैं, कहते हैं तमाम जो शो वीआईपी आए सलाम तमा के सबनी लिसनर्स के, तो वालेकुम अस्सलाम।

बता दो उसको। ओके जी, शफीक अली बुग्यू भाई वेलकम कहते हैं आपको बतूल में। मन हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम, बतूल कहते हैं फ्रॉम मटियारी से। कल मैंने आपको आपका प्रोग्राम नहीं सुन पाई क्योंकि कुछ दूर से मेहमान आए हुए थे, इस वजह से प्लीज सॉन्ग चलाना। सुभाणी तमाम जो गानो बुदनासी बतूल। वसीम भाई तमाम चौथा कहते हैं एक तेरी मुस्कान से पूरी दुनिया जो है ना वो रौनकी और रंगीन लगती है, जब तुम बात नहीं करती तो सारा जमाना वीरान सा लगता है। निदरी कहती है कुरको मुरको ये सब क्या है पूजा, ये पूजा भी नहीं जानती। अच्छा मेटा ऑफिशियल हमारे साथ कहते हैं सॉन्ग तो चलाओ, कौन सा? रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। वही भाई कहते हैं खुदा करे मोहब्बत में ऐसा मकान आए, किसी का नाम मैं लूं और लब पे तेरा नाम आए। अदा असा समझी वयासी तमा न समझो। तमा बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो। और आकिब जरवार भाई आप हमें सुन रहे हैं जी, कहाँ से सुन रहे हैं और बताएं आपके एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हुई या फिर नहीं।

न बाबा, मर्द सिर्फ वफ़ादार हूंदा आहिनि, औरत जी वफ़ा शायदि तव्हांखे कॾहिं मिली न आहे। मिले हा त तव्हां ई न चओ। ये तो चीज बड़ी मतलब आम सी है कि मर्द जो होता है उसकी वफा पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन औरत के मामले में ये चीज बड़ी फेमस है कि औरत बड़ी वफादार होती है, अगर हाँ वफा करने पर आए तो। अच्छा नरेश भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आया, बहुत शुक्रिया। अखलाक भाई हमारे साथ मौजूद है, नाइस यो, थैंक यू। शुएब अली हमारे साथ ही, वालेकुम असलाम। शो आप हमारा एंजॉय कर रहे हैं, वालेकुम असलाम, और आपको वेलकम कहते हैं। जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयरिंग किया जल्दी से कर दें, आज प्रोग्राम में माशाल्लाह काफी ज्यादा रश था और आप लोगों ने मुझे थका दिया, और दर्दे दिल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और किशोर भाई कहते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स रब के आगे रखता हूँ, तो जरा संभल कर, ऐसे लोगों से वाकई डरना चाहिए। साजिद हुसैन सुमरू भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अख्तियार अली भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अखलाक बलोच भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बस आप लोगों से इजाजत लेते हैं, वरी तहां से मुलाकात मुझे थे पई जी 5 बजे वाले प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो फार्मूला है जो आपने कभी तक इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये मेडिकेटेड फार्मूला है, जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को जरा सेव कीजिए, और ये जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें ना, इनसे जरा बचिए, उनको टाटा गुड बाय बोलिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी जिंदगी में एड कीजिए, और खूबसूरतियां जरा जो ना वो हासिल करते रहिए, और हमेशा के लिए हसीन प्यारे और प्यारे प्यारे बनते जाइए। और वरी तहां से मुलाकात मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में थी। रिजवान जागरानी भा तहां चुमो बुतवान, लास्ट में तहां प्रोग्राम के ज्वाइन कयो आहे, सो बस हाणे स्टॉप लगायो, 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कजो। सो मोकलानी नाहे बाबू, सिन सलामत, सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सिंध पुलिस धाड़ेला नाडो बेवस बनियल गुजरल डी खां अगवा थियल KTN न्यूज खानपुर मार जो रिपोर्टर अजीम सियाल अञा बाजियाब न थियो आईजी सिंध घरू वजीर सिर्फ नोटिस वठी वेही रहा हुकूमत बुंग बाबत बे मुगवी साहिब के वारसन से राबतो न कयो धाड़ेलन गुजरल अजीम सियाल के वारसन के फोन करे 1 करोड़ बुंग घुरियो संदन चवण आए तो करोड़ भुंग किथा आणींदासी कलम धड़न जो चवण आए तो कलम धड़न के अगवा जहा वाक्य गणती जुगा सिंध हुकूमत उन जवाब डे KTN न्यूज

टांक जे बाजार में ट्रैफिक पुलिस ते फायरिंग, टे पुलिस अहलकार शहीद। वजीराबाद बाजार में ट्रैफिक पुलिस ते फायरिंग में एएसआई असमत उल्लाह समेत टे पुलिस अहलकार शहीद थी गया। घरू वजीर मोहसिन नकवी पारां टिन पुलिस अहलकारनि जे शहादत ते दुख जो इज़हार। दहशतगर्दी खिलाफ़ शहीदनि जूं ॾिनल क़ुर्बानीूं ज़ाया न थींदियूं। केपीअ जूं हालतूं गवर्नर राज लॻाइण जहिड़ियूं आहिनि, पर वफ़ाक सब्र जो मुज़ाहिरो करे रहियो आहे। केपीअ जे गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ चयो आहे त सदर हिदायत कई त केपीअ में गवर्नर राज लॻाए छॾींदुसि। केपीअ में जंग वारी सूरत हाल आहे। पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ायुनि जूं ॻाल्हियूं पई करे। पीटीआई जे लांग मार्च लाइ तारीख़ वरी तब्दील थींदी। सोहेल आफ़रीदीअ खे सलाह आहे त मार्च ख़तम करे छॾे।

पोइ सलमान अक्रम राजा बि हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आश कई। पीटीआई अॻवान सलमान अक्रम राजा जो चवणु आहे त लांग मार्च मुलतवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो जीअं पंहिंजे फैसलनि ते नज़रसानी करे सघनि। हुकूमत सां जेके ॻाल्हियूं थींदियूं उन्हनि ते अमल कयो वेंदो। सूबे में अमुन न हूंदो त तरक़ी कीअं थींदी। केपीअ जे अक्सर इलाइक़नि में दहशतगर्दीअ जो राज आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम चयो आहे त केपी हुकूमत बाबति हक़ीक़तूं जल्द वाम जे आॾो आणींदासीं। खैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत जो ध्यानु रुॻो क़ैदीअ जे आज़ादीअ ऐं इतिजाह ते आहे।

IMF ऐं पाकिस्तान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं। IMF मिशन नाणे वारी वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो। IMF मिशन जो चइनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं। ज़रियनि जो चवणु आहे त टैक्स नेट वधाइण ऐं सूबनि खां वधीक टैक्स ऐं नॉन टैक्स रेवेन्यू जे उगाड़ीअ ते बाबति सुधारनि ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। IMF खे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऐं दहशतगर्दी जी फंडिंग रोकण बाबति आगाह कयो वेंदो। शिंघाई तावन तंजीम जे नेशनल कोआर्डिनेटर जो ॿिनि ॾींहनि वारो इजलास अॼु खां इस्लामाबाद में शुरू थींदो। SCO जे ईंदड़ इजलासनि ऐं सरगर्मियुनि जे तयारियुनि ते गौर कयो वेंदो। पाकिस्तान खे ईंदड़ साल SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट सरबराह इजलास जी मेज़बानी करणी आहे।

0: अमरीकी सदर ईरान सां हिन हफ़्ते ॻाल्हियूं थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त उमेद आहे त अमरीका तर्फ़ां ॻाल्हियूं कंदड़ हलंदड़ हफ़्ते ईरान सां ॻाल्हियूं कंदा। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कार्रवाइयूं मुकमल तौर ते ख़तम न थियूं आहिनि। मिड टर्म चूंडुनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयारु आहे। सफ़ारतकारी ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ु न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास सिराचीअ चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबिन अर्म्स खोलण लाइ बि तयारु आहियूं। अमरीका जंग ख़तम करे असांजा मंझबंद असासा बहाल करे ऐं पेट्रोलियम विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड।

0: कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
0: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331-252-5786।
2: जी हा, 2315-2575-786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटलाइज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।
2: ये गाना उनके लिए उनकी लाइफ जीरो और मुझे कहते लॉल, मेरी मॉडल जैसी चाल या मेकअप वाले गाल का बस टूटी फूटी इंग्लिश में करे कमेंट, बातें तेरी दिल पे ना देती मेरे गैन, न करूँ तुझे ब्लॉक न करूँ तुझे बैन, तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: मातली ऐं आसपास

0: कच्ची अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 to 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंग
2: एक टुक
1: के दिल से निकली
2: FM 88 सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GH4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: गैर कानूनी कदमन खां पोए केपीए में गवर्नर राज्यों कानूनी घुर्जू पूरी थी चुकी हैं. सोहेल आफरीदी के कदमन मां लगी रो है तो केपी हुकूमत दहशत गर्दन से गडियल है. गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न पर वो वजीर सोहेल आफरीदी न हलो. पीटीआई बानी की आजादी का पीटीआई के गाल आश भी दूं था. गवर्नर फैसल करीम कुंडिया चयो तो सूबाई हुकूमत अड़े हद तई न वे जो गवर्नर सोहेल आफरीदी का पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अक्रम राजा भी हुकूमत के गाल आश कर छी. पीटीआई अगवान सलमान अक्रम राजा है तो लॉन्ग मार्च मुलतवी कर हुकूमत के वक्त दिनो है. पांजन फैसलों से नजरसानी कर हुकूमत से तय थियल गाल अमल किया वो.
4: असा आलात करी सिंध का अपील था क्यों फिल फोर जो अगली साल के आदाद पे वे
5: अज असा धमकी मिली रो है अज असा अगवा पे पे वे
6: असाफी जो मुआशरे जो आवाज है मजलूम जैसे को दाद फरियाद नो है किथे जो मेरे सदारत नो है.
7: नारियल कल्चर जो एक किलो रुपये भूंगो तलब करन था यो कानून जो कानून आ
8: अगे कतल दीदा हाँ अगवा कर मुख्तलिफ मुतालबा क्या वन
9: हक सच लिखण वारा साफी उन्होंने पांजो सच न वणियो इन के करे असाजे साफी बेबाक साहब के अगवा किया
10: बेबाक साहब की आजिम शाह उनकी फुल फोर आजाद सिंध पुलिस किथे निंड में सुतो पियो अफसोसा चौड़ो तो पे असा इन अगवा की सख्त मजम्मत आ कयो.
3: केटीएन न्यूज खानपुर के रिपोर्टर अजीम सियाल के अगवा के बी थी वह पुलिस मुगवी साफी के बाजियाब कराने में नाकाम. केटीएन न्यूज खानपुर के रिपोर्टर अजीम सियाल के अगवा के

कलम धड़न पारा अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी जो मुतालबो। केपीए जे इलाके टांक में दहशतगर्दन जी पुलिस ते फायरिंग, टे अहलकार शहीद। वजीराबाद बाजार में दहशतगर्दन जी ट्रैफिक पुलिस जो एएसआई असमतुल्लाह समेत टे अहलकार शहीद थिया। घरू वजीर मोहसिन नकवी पारां टिन पुलिस अहलकारनि जी शहादत ते दुख जो इज़हार। दहशतगर्दन जे ख़ात्मे वारे अज़म जो वर्जा। $1,20,000 जी किस्त लाइ आईएमएफ ऐं पाकिस्तान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं। अॼु आईएमएफ मशीन नाणे वारी वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो। आईएमएफ मशीन जूं चइनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं। ज़रियनि जो चवणु आहे त टैक्स नेट वधाइण ऐं सूबनि खां टैक्स ऐं नॉन टैक्स रेवेन्यू जी उगाड़ीअ ते सुधारनि ते ॻाल्हियूं थींदियूं। आईएमएफ खे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऐं दहशतगर्दनि जी फंडिंग रोकण बाबति आगाह कयो वेंदो।

0: अमरीकी सदर ईरान से इन हफ्ते गालियों थियण जो इम्कान जाहिर कर छो। डोनल्ड ट्रंप जो चवण है उम्मीद है अमरीका तरफा गालियों कंदड़ हलंदड़ हफ्ते में ईरान से गालियों कंदा। अमरीका जंग खटी चुको है पर कार्रवाई मुकम्मल तौर से खत्म न थी हैं। मिड ट्रम्प चूंडन का अग ईरान ते हमलो कर सका तो ईरान खिलाफ जंग जल्द खत्म थियण की उम्मीद है। असाजो बुनियादी मकसद ईरान के जोहरी हथियार ठाण का रोकना है। ईरान खिलाफ फौजी ए मुआशी सतह से कामयाबी मिली रही है। ईरान अमरीका से बीहर जंग करण लाय भी तैयार है। सफारतकारी डां वापस अचण लाय को भी जवाज ना है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राची है तहरान जंग जो खात्मो चाहे तो आबना अर्म्स खोलण लाय भी तैयार आयो। अमरीका जंग खत्म करे असाजा मंजमंद असासा बहाल करे पेट्रोल विक्रो करण ता पाबंदी हटाई वजन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 247

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-94-294।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी।

0: मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM की आवाज।
0: मातली के हो तो आतली की है,
1: सुनते रहो GFM 4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर.
3: चलेगा ये मैं आपको कहता हूँ, अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी टीम शिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा. ये कहते हैं कि मैं और खतरनाक बन जाऊंगा. मैं आज इसको इस केपीके से और इस पेशावर से ये कहना चाहता हूँ कि अफरीदी साहब आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, कोई सलाखों के अंदर होंगे. जो लूट मार आपने किए उसका हिसाब किताब आपको देना होगा. जो आईनी खिलाफ वर्जी आपने किए और कर रहे हैं उसका हिसाब किताब आपको देना होगा. जो आपने पहले से वही नौमाई और जो भी वाकयात किए उसका हिसाब किताब भी आपको देना होगा.
4: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगन दो या वलो वजीर तब्दील थी दो. वफाकी हुकूमत जो मुख्तलिफ़ ऑप्शन से गौर वीचार. वफाकी वजीर अमीर मकाम चयो आहे त केपीए में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि. केपी जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी सुठो माण्हू आहे. केपी में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जा माण्हू वॾे अरसे खां दहशतगर्दीअ जो शिकार आहिनि. तब्दीली सरकार रुगो वॾा वज़ीर ई तब्दील कया आहिनि.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और तुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
6: खुशखबरी खुशखबरी अवाजी पंजे शहर मातली में अलराजी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन आई मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड आई MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे आई हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो आई बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली।

0: हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

कख सड़न पन सड़न सड़े साओ गाह, कख सड़न पन सड़न सड़े साओ गाह, जन रिझायो अल्लाह त उन लॻे थिन। सुवारी सिंध जे मलूक मिटीअ ते रहंदड़ तमाम मौज़िज़ ॿुधंदड़नि खे लाखेणे लतीफ़ जी ॿोली, मेहराण जी छोली ऐं मिठड़ी अमड़ जे लोली जहिड़ा सहणा सलाम। GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जी तमाम टीम जा कुर्ब कबूल पवन। मौज़िज़ सामईन, अव्हां जा कहिड़ा हाल आहिनि? अव्हां ख़ुशबाश आहियो? अव्हां ठीक ठाक आहियो? अव्हां चाक चङा भलाई मतारा जोड़ आहियो? असांजी दुआ आहे त सदाई तारनि में चंड हुजो, खीर में खंड हुजो, मेवनि में अंब हुजो, ऐं कॾहिं बि अव्हां जी मुर्क मेरी न थिए। सदाई अव्हां जे लुड़कनि जो ॾुगार ऐं मुर्कुनि जो सुकार हुजे। शाल अव्हां खे कोसो वाह न लॻे, शाल अव्हां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, जुग जुग जीओ, मुरकंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो। मौज़े सामईन, ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM मातली, GAFM मीरपुर ख़ास, GAFM मटियारी, GFM सकरंड, GFM मेहरापुर, GFM मोरो, GFM लाड़काणो ऐं GFM सखर जो आवाज़। हाज़ुर आहे अव्हां जो पंहिंजो शो सिंधड़ीअ जी शाम। सिंधड़ीअ जी शाम अव्हां जे नाम कंदे हाज़िर अव्हां जो आरजे अव्हां जो पंहिंजो यूनिस बकारी। अव्हां जे सुख ऐं सलामतीअ जूं खोड़ सारियूं दुआऊं खणी अव्हां जे ख़िदमत में हाज़िर। जी मौज़ सामईन, यकीनन अव्हां हूंदव ठीक ठाक ऐं हशाश वशाश। असांजी दुआ आहे त तव्हां हमेशह ख़ुशबाश हुजो ऐं शाल ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो। साईं, मुंहिंजा मौसम मटिजी रही आहे ऐं जॾहिं मौसम मटिबी आहे त यकीनन पंहिंजा निशान छॾे वेंदी आहे। सख़्त गर्मियूं ऐं वरी ॾींहं जो सख़्त गर्मियुनि खां पोइ राति जो माक माक ऐं थधी हवा। कां निसरी चुकी आहे, सर निसरण जे वेझो आहिनि ऐं बबरनि जूं फुलड़ियूं, वण टिण सावा सरसब्ज़ आहिनि, हर तरफ़ माहौल मोतर आहे ऐं किथे किथे इंतिहा ख़ूबसूरत असांजे सुहिणी सिंध जी सरज़मीन जूं सारियूं तयार आहिनि ऐं उन जा सुगदासी चांवर ऐं उन्हनि जी ख़ुशबू। जिते जिते जेको बि माहौल आहे उहो समूर माहौल अव्हां सभिनी जे लाइ आहे ऐं उन माहौल खे इंजॉय कयो। ऐं अॼु के शो में यकीनन अॼु असां अव्हां सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं खोड़ सारियुनि ॻाल्हियुनि में हूंदा तव्हांजा मैसेज शामिल। त पोइ तव्हांखे लिखणो आहे पंहिंजी मोबाइल मां MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखजो
88 81 888 1 ते मैसेज डारे मोकिलजो ऐं हा ॿिए कलाक में यानी 6 खां 7 वॻे ताईं वारे कलाक में अव्हां जूं लाइव कॉल्स बि शामिल कंदासीं। प्रीतिअ रीत जे पंधनि ते पहिरीं हलूं था आवाज़ जे पासे जिते सैयद वज़ीर अली शाह जो मिठड़ो आवाज़ आहे। अचो त गची ॿुधो।

वेलकम बैक मुझे समीन ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क शो बुध पे सिंध डी जी शाम आर जे अवे यूनुस बकारी अवसाण मुखातिब है। जेकर शो में शामिल थे चाहो था जल्दी से लिखो MTI स्पेस दियो पेंजे गोठ शहर जो नालो लिखो पेंजे नालो 888 यानी 8881 ते मैसेज जारे मोकिलजो अवजा मैसेजेस जरूर शामिल करासी। आई हाँ GFM 88 के ध्यान सा गौर सा प्यार सा पेंजाइप सा बुधण लाए अवज मेहरबानी।

शामिल कंदासीं अवांजा प्यारा प्यारा मैसेजिस। ॻोठ पुनू खान पंवर खां असांखे रुस्तम अली पंवर ॿुधे पियो, तमामु घणी महिरबानी, मोहबतूं भलीकार। ऐं कुंडरी खां चोहन कुमार कोहली, डॉक्टर अनीता चौहान, संगीता पारस ॿुधे पई, अवां जूं बि तमामु घणी महिरबानी। रोहिड़ी सखर खां नज़ीर अहमद मंगरियो ॿुधे पियो, ऐं अवां लिखियो शाम जे हसीन पहर में उतर जे थधड़ियुनि हवाउनि में अवां जो मिठड़ो आवाज़ ऐं नमकीन आवाज़ मन खे मोहे पियो। अच्छा जी, मोहबतूं तव्हांजी भलीकार लखतौर। ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे वॾा हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली, झंडो मरी खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली, अवां जूं बि तमामु घणी महिरबानी। वॾा वॾा अवां जा जो अवां असांखे ॿुधो पिया, थैंक यू, भलीकार चवंदासीं। ऐं जनाब असांखे ॻोठ जी जनाब ॻोठ आहे आलम खान जरवार, उतां खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार, मोहम्मद इदरीस जरवार यादि कयो, अवां जूं बि तमामु घणी महिरबानी। अवां खे बि चवंदासीं वेलकम ऐं भलीकार, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तारनि में चंड ऐं खीर में कंध हुजो, तमामु घणी महिरबानी।

ॻोठ गुलाम सेन महर खां असांखे ज्वाइन कयो आहे घोटकी खां। जी हा जनाब, असांखे रहमतुल्ला ॿुधनि पिया, तमामु घणी महिरबानी, थैंक यू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं जॾहिं बि लिखो त वधीक ॻाल्हियूं लिखण खां पहिरीं बहितर त पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो क्लियर लिखो, ताकी असां वटि मैसेज में उहो सही नालो पहुचे। बाज़ो का काफ़ी दोस्त आहिनि, उहे लिखंदा आहिनि पर पंहिंजो नालो लिखणु विसारे छॾींदा आहिनि। थैंक यू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ओके जनाब, असांखे ज्वाइन कयो आहे तमामु घणी मोहबतूं असांखे ॿुधे थो पाटार खां। जी हा पाटार बदीन खां हाफिज़ मोहम्मद हारून सुमरो। ऐं अव्हां जी महिरबानी, हाफिज़ मोहम्मद हारून सुमरो साहिबु, अव्हां असांखे पाटार पुलिस लाइन बदीन खां ॿुधो पिया, थैंक यू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं हाफिज़ अब्दुल जबार सुमरो तव्हां असांखे ॿुधे पियो, कहिड़ो ॾींहुं कुर्बत आहे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक

खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि

0: बारन जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-44-95-244।
2: आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल फार्मे हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे दींदासी। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।

वेलकम बैक मजे सामाईन, ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। अवां जो पंज शो तमा बुधो पिया सिंधड़ी जी शाम, आई अवां जो आरजे अवां साण आहे।

जी दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरो ए भाईरो जेकर अजो के शो में अवां शामिल थियण चाहियो था त हाणे ई मैसेज कयो लिखो MTI स्पेस दियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलजो ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो जी हा जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे मैसेज मोकिले असां साण शामिल थी चुका आहिनि उन्हनि महिरबानी जा शामिल करे वठूं मैसेज ॻोठ खबड़ भील खां असांखे रामचंद ॿुधे पियो उदासी परवेज पाकिस्तानी ॿुधे पियो ऐं सुहिणो शावेज सुल्तान ॿुधे पियो अवां जी तमामु घणी महिरबानी भलीकार ऐं अवां असांजे शो में काफ़ी ॾींहनि खां पोइ शामिल थिया आहियो अवां खे बि चवंदासीं वेलकम भलीकार ऐं ख़ुशि आमदीद जो तव्हां जो शो जो हिसो बणिया ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे जी हा असांखे ज्वाइन कयो आहे कोहिस्तान जे बड्डे जबल खां दीदार ॿुधे पियो सैताणी साहब ऐं इरशाद सैताणी रुस्तम अली पंवर अवां जी तमामु घणी महिरबानी तव्हां असांखे बड्डे जबल खां ॿुधो था ऐं ॻोठ सरफराज़ राजड़ खिपरे खां सोहराब ॿुधे पियो अवां जी तमामु घणी महिरबानियूं सुमार भील ॿुधे पियो दिलीप कुमार ॿुधे पियो ऐं अब्दुल हकीम बजीर ॿुधे पियो तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी वॾा वड़ नोटो खां असांखे ॿुधे पई नंढड़ी रवीना कुमारी ऐं कमलेश कुमार

रजीना कुमारी रामचंद्र कुमार अवां जो तमाम घणी महिरबानी अवां खे चवंदासीं वेलकम बहितरीन शो तव्हां लिखियो थैंक यू तमाम घणी महिरबानी ऐं भली कार चवंदासीं ओके जनाब साज़ ऐं आवाज़ साथ में अवां जो मोहबत न भरियो सां ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क कोठा हाजी सुल्तान लुंड खां प्यारली लुंड ॿुधे पियो अवां जी बि तमामु घणी महिरबानी वॾा वड़ ऐं रोहड़ी खां मोहम्मद सुलेमान ऐं अब्दुल हमीद ऐं अब्दुल सतार शेख ॿुधनि था तमामु घणी महिरबानी अब्दुल रज़ाक हालेपोट ॿुधे पियो किरोड़े कुर्ब ऐं वेलकम चवंदासीं तव्हांखे गुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ॿुधे पियो अवां जो तमामु घणी महिरबानी नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी साहिबु ऐं आरज़ू असलम जलालाणी अवां जा वॾा वॾा ख़ुशि

पिथौरा खां मोमिन शहर ॿुधे पियो। मोमिन शहर साहब तव्हांजो महिरबानी, मां पिथौरा खां असांखे ज्वाइन कयो आहे। किरण कुर्ब तव्हांजा थैंक यू ऐं भलीकार चवंदासीं तव्हांखे।

चोर जमाली का नाज नगर खान जमाली वन मेहरबानी मोहम्मद हाशिम जमाली मोहम्मद मेहराब जमाली गुलाम कादर जमाली प्रोग्राम के पसंद कयो थैंक यू भलीकार मोहब्बत हो खुश हो जो आबाद हो जो आई जनाब अवां संग याद कयो है कुर्बस।

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz.
1: Sona sirf zevar nahi har ghar ki amanat hoti hai. इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।

वकील जनाब साज ऐं आवाज़ जे साथ में जीअं मूं पहिरीं ज़िक्र कयो त असां लाइव कॉल्स वठंदासीं 6 वॻे खां पोइ 6 ऐं 7 जे विच में जेको टाइम हूंदो उहो वञी लाइव कॉल जो हूंदो। झपियो डीपलो खां मोहम्मद सिद्दीक़ पाढ़ो ड्राइवर रोशन अली पाढ़ो ॿुधनि पिया। अव्हां जी बि तमामु घणी महिरबानी, वेलकम चवंदासीं। अव्हांखे भलीकार ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सदाई सुखिया हुजो। थैंक यू। ऐं कश्मीर खां करमपुर खां असांखे ज्वाइन कयो नबी बख़्श उर्फ़ नबन बिजाराणी, तमामु घणी महिरबानी नबन बिजाराणी साहबु।

0: खुश हुजो, आबाद हुजो। थैंक यू, वरी कार चवंदा थी। त पोइ साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक। इन दौरान जेकॾहिं तव्हां लिखी वठंदा एम टी आई स्पेस पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखंदा 8881 ते मैसेज मोकिलींदो त कंदासीं बिल्कुलु शामिल। पोइ इंतज़ार पिया कयूं अव्हां जे मैसेज जो। तेसीं ताईं आवाज़ ई दुनिया जो हिकिड़ो मैसेज, ज़बरदस्त ट्रैक, नगमा नाज़ जो आवाज़।
1: ये जो पढ़ा बड़ा

जी जनाब, कीअं पियो लॻे शो अॼोको सिंधड़ी जी शाम? यकीनन उन खां पहिरीं जो असां न्यूज़ ब्रेक लाइ हलूं, असां हलंदासीं हिकिड़े ट्रैक जे थ्रू ऐं ज़बरदस्त आवाज़ ॿुधाईंदा तव्हांखे वठी हलंदासीं ख़बरुनि जे लाइ। सो त पोइ ॾिसूं था पहिरीं ट्रैक ॾांहुं वधूं।

ठीक टिन मिंटन खां पोइ ख़बरूं हूंदियूं ऐं ख़बरुनि खां पोइ कमर्शियल ब्रेक ऐं बिना ब्रेक वापसि ईंदासीं असां छह वॻे खां पोइ पोइ लाइव कॉल जे लाइ नंबर ॾींदासीं हुन नंबर ते कजो कॉल अव्हां जूं कॉल शामिल कंदासीं छह वॻे खां पोइ वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा मसाला फूल का है फूल किधर जाए

जी जनाब रांझन सखर से सुन रहे हैं, कहते हैं आर ओ रांझन सखर प्लीज प्ले सरबंत सिंधी। बिल्कुल सरबंत सिंधी साहब सदा बुधी सी न्यूज ब्रेक का पे तपई मजे सा ट्रैक वटी वठूं ब्रेक वटी वठूं बाकी गालियों बिना ब्रेक जे कंदासी छो तो प्रोग्राम है जारी हो सारी ब्रेक का पो आपे सींदो यूनिस बकारी।

0: is 6 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा, ये कहते हैं कि मैं और खतरनाक बन जाऊंगा। मैं आज इसको इस केपीके से और इस पेशावर से ये कहना चाहता हूं कि अफरीदी साहब आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, वही सलाखों के अंदर होंगे। जो लूट मार आपने किए उसका हिसाब किताब आपको देना होगा। जो आईनी खिलाफ वर्जी आपने किए और कर रहे हैं उसका हिसाब किताब आपको देना होगा। जो आपने पहले से वो याद।
5: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगंदो या वडो वजीर तब्दील थींदो। वफाकी हुकूमत जो मुख्तलिफ़ ऑप्शन्स ते गौर वीचार। कानून वारे वफाकी वजीर सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ चयो आहे त एमरजेंसी बाबति आइन बिल्कुल वाज़ेह आहे। हालतूं अहिड़ियूं हुजनि ऐं आइन जी घुर्ज हुजे त एमरजेंसी लॻणु घुर्जे। वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम चयो त के पीअ में गवर्नर राज जो घुर्जूं पूरियूं आहिनि। के पी जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी सुठो माण्हू आहे। खैबर पख्तूनख्वा में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो। गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सोहेल आफ़रीदी न हलंदो।

0: पानी में डेढ़ के बरस कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई ये अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहां पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस कुर्सी की। जो मेरा मौका पहले दिन था जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ, हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है, इसमें हम सब की भलाई है।
1: गवर्नर राज जी धमकिन का डिजण वारो नाया कुर्सी के खातिर पंजी नजरिए ता हथ न खड़ंदस। खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सुहेल आफरीदी है अवामी मैंडेट खिलाफ केर भी नथो वही सके, मुख्य को भी फिक्र ना है, रियासत के पंजी पॉलिसी तब्दील करण घुर्जे। पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा चयो लॉन्ग मार्च मुलतवी करे हुकूमत के वक्त डिनो है, पांजन फैसलन ते नजरसानी कन, हुकूमत से तय थन्दड़ गालन ते अमल कयो वेंदो।
2: आपकी जो मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आपको अब ये फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है। इट्स एज क्लियर एज दैट।
1: पीटीआई के पाकिस्तान ए अफगानिस्तान में कहीं एक जी चूंड करनी पौंदी। सोहेल आफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर भी नाकाम थी वो है। सुतसमा व वफाकी वजीर अता ताड़ चयो तो सूबे अंदर तबाही थी चुकी है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के अरबे रूपया डिना, बुधायो वे तो पैसा काडे वया। ममलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो केपी हुकूमत बुधाए तो संदन अफगानिस्तान बाबत रवियो नरम छो है। सरहद पार थन्दड़ हमलन में 70% अफगानी शहरी मुलविस।
3: अपील था क्यों सिल फोर जो अस्सी साल के हाथ पे वे
4: अज असा धमकी मिली रो अज अस अगवा पे पे वे
5: असा मुआशरे जो आवाज है मजलूम जो को दाद फरियाद ना किथे भी सदारत ना
4: पे वे
5: असा मुआशरे जो आवाज है मजलूम जो को दाद फरियाद ना किथे भी सदारत ना
6: नारियल कल्चर।

0: KTN News कानपुर में अर्जी रिपोर्टर अजीम सियाल की अगवा के बढ़िया थी वया पुलिस मुगवी सहाफिया के बाजियाब करण में नाकाम पुलिस की कार्रवाई बे गाल महदूद अजीम सियाल की बाजियाबी लाए अमली कदम न खो अजीम सियाल की बाजियाबी लाए कलमदानी सरापा एहतजाज बणियल मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा और धरना घोटकी नौशरो फिरोज गंबट उबावड़ो मीरपुर माथेलो ठरी मीरवा चक बख्शापुर बान सईदाबाद में एहतजाज कियो जरवार खैरपुर दोदापुर कुम दड़ो ए तलार में भी कलमदड़न एहतजाज रिकॉर्ड कराया सखर में वकीलन भी एहतजाज कर अजीम सियाल की बाजियाबी जो मुतालबो कयो कलमदड़न पारा अजीम सियाल की बाजियाबी जो मुतालबो
1: KTN न्यूज का सीनियर रिपोर्टर हसन के कच्चे में अगवा हो गया है सर आपने उस सवाल से
2: मैं जनरल प्रोटेक्शन कमीशन को यह केस रेफर करेंगे आप तफसीलात हमें फराहम करें उसका भरपूर नोटिस है।
0: सुसमा और वफाकी वजीर अताताड़ KTN न्यूज के रिपोर्टर अजीम सियाल की अगवा जो नोटिस वरतो अताताड़ चयो है सहाफी अजीम सियाल की अगवा की मजम्मत क्यों था वाके बाबत तफसील लिना वन सहाफी की बाजियाबी लाइ घुर्बल कदम खड़ जरूरी है।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि?

केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 030029624 35। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड माथली।

वेलकम बैक मजे सामाईन, ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क। तव्हां शो ॿुधो पिया सिंध डीए जी शाम। हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हां सभिनी खे यूनिस बकारी जा सलाम। जी मज़े सामाइन, यकीनन अॼोके हिन शो में असां जेको हाणोको कलाक शुरू थियो हुन में कॉल्स वठंदा आहियूं। लाइव कॉल जो तरीक़ेकार इहो ई आहे त हिकु दफ़ो तव्हांखे कॉल करणी आहे, मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोल करणी आहे, उन जे लाइ असां नंबर ॿुधाईंदासीं। उन नंबर ते तव्हां कॉल कयो, ऐं जेकॾहिं आस पास में तव्हां वटि रेडियो वॼे पियो त उनखे परे रखिजो या उनजो आवाज़ बिल्कुलु घटि रखिजो। जेकॾहिं तव्हांजे वेझो वॼंदड़ रेडियो जो आवाज़ वधीक हूंदो त उन में ईको गूंजार कंदो, ऐं ईको जी गूंजार जे करे असांखे मजबूरन कॉल कटणी पवंदी आहे। त पोइ दोस्तो, महिरबानो, कदरदानो, भेनरो ऐं भाइरो, कॉल करण जे लाइ नंबर नोट करे वठो। नंबर असांजो आहे 0334352578 6। सवली सिंधीअ में इहो नंबर आहे 2034525786। जी हा, 2034352578 6। इहो असांजो नंबर आहे, हिन नंबर ते तव्हां कॉल कयो ऐं तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल थींदी, कॉल थींदी, त पोइ अटेंड करे वठंदासीं तव्हांजी कॉल खे, ॾिसंदासीं त पहिरीं कॉल कहिड़े महिरबान जी असां ताईं पहुचे थी। हलो, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, आवाज़ अचे पियो साईं? हलो, अस्सलामु अलैकुम।

0: साईं केर साहब ऐं किथां खां? प्यार अली लुंड साहब, खुश आयो, ठीक आयो, चंगा भला, मतारा जोड़?
1: सब खैर अलहमदुलिल्लाह, मालिक जे करम ऐं सरमा बतायो, खुश आयो, खैरियत सां आयो?
0: अलहमदुलिल्लाह, अवां जी दुआ लॻी पए। तव्हां सां गॾु ॿियो केर पियो ॿुधे प्यार अली?
1: जी सर, सलाम ॾियण चाहींदासीं दोस्तनि खे, दिलीप कुमार मेघवाल, मलिक मोहम्मद बलोच, रुस्तम पावर ऐं रामचंद कुमार मकवाणो।
0: तमामु घणियूं महिरबानियूं साईं, लख थोरा। जी जनाब, साज़ ऐं आवाज़ साथ में हिकिड़ी वधीक कॉल अटेंड कंदासीं, ॾिसंदासीं केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। सबनाज, ठीकु आहियो, चङा भला आहियो? शुक्र अलहमदुल्ला, तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे। तव्हांखे शो कीअं थो लॻे? तव्हां मुंहिंजा फैन आहियो, मां तव्हांजो थोराइतो आहियां। अलाह साईं ख़ुशि रखे तव्हांखे, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। प्रोग्राम जे हवाले सां ॿियो कुझु चवणु चाहींदा?
2: तव्हांजो प्रोग्राम ज़बरदस्त हले, बाक़ी तबसुम लाइ नियापो त
0: तबसुम ई शो ॿुधंदी हूंदी त ज़रूरु तव्हांजे हवाले सां कॉल कंदी, शो में शामिल थींदी ऐं ॿुधाईंदी तूं शो में कॾहिं ईंदी। थैंक यू। हा, इनशाला इनशाला तव्हां जल्दी ॿुधी सघंदा तबसुम खे, तमामु घणी महिरबानी, लख थोरा।

0: किया है GFM 88 रेडियो नेटवर्क सिंधड़ी जी शाम आई अवां जे नाम ॾिसंदासीं त असां सां गॾु हाणे कॉल ते केरु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. हिन साईं छा हाल आहे? कुझु आयो ख़ैर?
0: अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई. केरु साहब ऐं किथां खां?
1: सर, कुंदरी खां चोवन कुमार गोली अॼु थो करियां. सर,
0: छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो चोवन? अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे. ए वन लॻा पिया आहियूं. अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: दोस्त हीअं वेठो हूंदो आहे कासम, त तकरीबन पासे में वेठो हूंदो कासम लचवाणी आहे. दोस्त असांजो तव्हांखे रुस्तम पवर बि ॿुधे पियो, ऐं गुलाब गुल भील ऐं हरेश खेताणी सां गॾु ॿुधंदो आहे. चेलार में सभिनी खे सलाम सर.
0: वालेकुम असलाम. कहिड़े कुर्ब मिठा माण्हू, कहिड़े कुर्ब तव्हांजा? थैंक यू. चोवन कुमार कोहली जी कॉल ऐं ॾिसंदासीं हुन खां पोइ असां अगरि केरु हूंदो. जी जनाब, कॉल ते असां सां जुड़ी चुका आहिनि केरु, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहिनि. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम साईं, छा हाल आहे? रोड़ी सखर खां तव्हांजो पुराणो लिस्नर नज़ीर अहमद मंगरियो.
0: साईं नज़ीर अहमद मंगरियो साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला.
2: अलाह जा एहसान आहिनि तव्हां भाॼियूं दुआयूं आहिनि तव्हां. ॿुधायो कीअं ख़ुशि रहा पिया हो?
0: अलहमदुल्ला, अवां जी दुआ लॻी पई आहे. तव्हां ख़ुशि आहियो, आबाद आहियो?
2: माशाला ज़बरदस्त तव्हांजो प्रोग्राम. अलाह जा एहसान आहिनि उतर जे थधे हवाउनि में तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदा.
0: साईं भला भाग असांजा, अवां जहिड़ा महबूब दोस्त असांखे ॿुधनि ॿियो छा घुरिजे?
2: मिठड़ो आवाज़ ऐं अंदाज़ तव्हांजो लुत्फ़ ॾेई रहियो आहे हक़ीक़त में.
0: कहिड़े कुर्ब मिठो माण्हू, कहिड़े कुर्ब? अवां सां गॾु ॿियो केरु केरु ॿुधे पियो?
2: हा, काफ़ी दोस्त आहिनि, पर थी सघे तव्हां थोरो आहिस्ते आहिस्ते पोइ सुमिरे जो कलाम ॿुधाईंदा.
0: ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, कीअं कोन ॿुधाईंदासीं. असांखे हिते हलणो आहे, अवां सां गॾु ज़िंदा रहणो आहे, त ॿुधंदा ॿुधाईंदासीं.
2: अलाह ख़ुशि रखंदो आहे. नबन बिजराणी तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे. सिकंदर अली शबानी आहे.
0: जी जी.
2: मोहम्मद सुलेमान शेख ऐं अब्दुल महमीद शेख तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे थो.
0: जी जी.
2: काफ़ी जेके बि दोस्त आहिनि, चोवन कुमार कोरी सलाम ॾींदा भई.
0: वालेकुम असलाम. कहिड़े कुर्ब मिठो माण्हू, कहिड़े कुर्ब? थैंक यू. महिरबानी. ओके जनाब, साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में असां साण अवां जो साथ ऐं हिकु वधीक कॉल अटेंड कंदासीं. ॾिसंदासीं त कंहिंजी आहे कॉल. जी जनाब, हलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम भाउ, कहिड़ो हाल आहे?
0: भाउ दुआ आहे. भाउ तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो?
3: जी घोट बाबू वारो सरपारकर खां ॻाल्हायो पियो, दिलीप कुमार मेघवाड़.
0: छा हाल आहे दिलीप कुमार भाउ?
3: दीदी अलाह जो शुक्र आहे, हाल कुझु बहितर आहे न.
0: हाणे कुझु बहितर आहे न? अच्छा, ऐं अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
3: जॾहिं तव्हां सां ॻाल्हि कयूं था न, ॻाल्हायूं था, तॾहिं हाणे लफ़्ज़ कटिजी वञे थो, बिल्कुलु बहितर थी
0: वञे. न त पोइ ईअं मां तव्हांखे रोज़ कॉल करियां, जेकॾहिं मुंहिंजी कॉल ते तव्हां बहितर थी सघो था, त मां सॼो ॾींहुं तव्हांखे कॉलूं करण लाइ तयारु आहियां.
3: जी जी जी जी हा, अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे. मूंसां गॾु कुझु दोस्त ॿुधनि पिया, हुनखे चावल कंदासीं.
0: साईं साईं भले नाला वठो हुननि जा.
3: ॾियारली लुंड, रोस्तम पवर, रामचंद मकवाण, मलक मोहम्मद बलोच, मोहम्मद साले लगारी. अॼु थोरा नालो वठंदा छो त ॿियनि खे वारो ॾियो, सभिनी खे सलाह.
0: ॾाढो सुठो कमु हाणे तव्हां शुरू कयो, इहो सही आहे. पहिरीं एतिरा नाला वठंदा आहियो, चङो ख़ासो आरजे एतिरा नाला न वठे जेतिरा हिकिड़ो लिस्नर नाला वठी वञे थो.
3: दोस्त एतिरा आहिनि जेतिरा रेल गाॾियूं दॿा हूंदा आहिनि न.
0: बाबा सॼी सिंध जेका आहिनि उहे पंहिंजा दोस्त आहिनि, भाउ आहिनि, भेणूं आहिनि. पर हाणे जंहिंजो नालो तव्हां न वठंदा उहो नाराज़ थी वियो. हिन खां बहितर आहे त थोरा हिकिड़ो ॿ नाला वठो पंहिंजे घर भातियुनि जा, पंहिंजा जेके आहिनि छोकिरा हुननि जा, ताकी ॿियनि खे चइजे त यार वरी ॿिया था कावड़ कनि. कुर्ब तव्हांजा, कुर्ब तव्हांजा. थैंक यू. भलीकार चवंदासीं तव्हांखे साईं मुंहिंजा. हा, चोरी चोरी कोई कंहिंसां नेण मिलाए वेठो आहे. कॉल अटेंड कंदासीं, ॾिसंदासीं केरु आहे असां सां गॾु. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम अस्सलाम साईं, कीतर जबल खां बदरुद्दीन चांडिया.
0: बदरुद्दीन चांडिया साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
4: साईं मानी हाज़ुर आहे. साईं मानी.
0: साईं हींअर ई मानी पिया खाओ संजे मां?
4: जी जी साईं. कुझु मुंहिंजा दोस्त आहिनि.
0: जी जी.
4: फहीम चांडियो.
0: जी जी.
5: बाबर ध्यान दियो
0: जी जी
5: जुल्फकार ध्यान दियो
0: जी
5: अदराम ध्यान दियो असद ध्यान दियो
0: मेहरबानी मेहरबानी साईं मेहरबानी
5: ओके ओके
0: ओके ओके जी जनाब इकरार वहीद जी आवाज से गड़ कॉलूं अचन पयूं ॾिसूंदा कंहिंजी कॉल आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
6: वालेकुम अस्सलाम
0: केर साहब ऐं किथां खां जी छा हाल आहे चांडिया साहब ख़ुशि आहियो
6: शुक्र अलहमदिल्ला मालिक साईं असां रब गरम दुआ साईं तव्हांजो तव्हां पंहिंजा हलजो ख़ुशि आहियो त हेठां मज़े में
0: जी जी अलहमदिल्ला तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे
6: मुंहिंजा माण्हू रूम सां गॾु हुन साजिद हुसैन चांडियो ऐं नज़र हुसैन चांडियो ऐं मुंहिंजा ॿाहिरि नालादा चांडियो ऐं मौलादा चांडियो मुंहिंजो प्यारो दोस्त आहे ज़ुल्फकार चांडियो साईं
0: साईं सभिनी जूं महिरबानी लख थोरा मिठा माण्हू ओके कुर्ब तव्हांजा आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो जी एफ एम सखर जी एफ एम लाड़काणू जी एफ एम मीरपुर ख़ास जी एफ एम मोरो जी एफ एम मेहरापुर जी एफ एम मटियारी जी एफ एम सकरंड ऐं जी एफ एम मातली जो गॾियल आवाज़ ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम साईं केरु साहब ऐं किथां खां जी ज़ुल्फकार अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
7: पर मूंसां गॾु मुंहिंजा भाणज आहिनि बदर थिया ॾियो फहीम थिया बाबर थिया ॾियो
0: महिरबानी मिठा माण्हू महिरबानी लख थोरा तव्हांजा ख़ुशि हुजो ओके जनाब ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम
8: वालेकुम सलाम सही चवाल आहे ख़ुशि आहियो
0: अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां
8: साईं आर जे नाल फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ॻोठ ग़ुलाम हुसैन जलालाणी लग जोल
0: महिरबानी मिठा माण्हू वेलकम चवंदासीं तव्हांखे तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
8: हा साईं काफ़ी दोस्त मूंसां गॾु आहिनि हिन वक़्तु असांजो चारो दोस्त रुस्तम अली पंवर रोशन अली पंवर ग़ुलाम रहीम बलोच कुर्बान ख़ासि कली चोवन कुमार कोहली हुन सां गॾु कुझु मुंहिंजे फैमिली जा मेंबर आहिनि जंहिंमें आरज़ू असलम जलालाणी शुजात हुसैन जलालाणी अख़्तियार हुसैन जलालाणी मुख्तियार नाज महबूब नाज ऐं असां गॾु ज़ीशान हैदर जलालाणी तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया
0: महिरबानी मिठा माण्हू थैंक यू ख़ुशि हुजो हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे नंढो कमर्शियल ब्रेक आहे हिन दौरान कॉल न कजो कॉल कजो ठीक पंजनि मिंटनि खां पोइ प्रोग्राम आहे जारी हो सारी हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो यूनुस बकारी केॾांहुं न वञो

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।

0: वेलकम बैक माझी सामाईन, ही आहे GFM 88 रेडिओ नेटवर्क अमाजे शो अमा बुधो पिया जी हा सिंधड़िए जी शाम सिंधड़िए जी शाम में यूनिस बकारीये जो सलाम अमा जिते बुझो खुश हुजो सदाई सुखिया हुजो ये दुआऊं डींदे अवां जी कॉल वसूल कंदासीं नंबर आहे 0334-352-5786 जी हा बुड़ी 634-35-7786 ते कॉल कयो ॾिसंदासीं कॉल ते केर आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केर साहब ऐं किथां खां जी छा हाल आहे गुलाब गुल
1: बिल्कुलु ठीक ठाक तव्हां
0: अलहमदुल्ला तव्हां सां कॾहिं ॿियो केर बि ॿुधे वालेकुम सलाम कुर्ब कुर्ब मिठा माण्हू कुर्ब तव्हांजा जी जनाब जल्दी जल्दी कॉल करियो 0334-352-5786 असांजो नंबर आहे हिन नंबर ते कॉल कयो ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम साईं काठगोट साहिबु सुर चाढ़ियो असां चाढ़ियो
0: छा हाल आहे चांडे साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो भली कार अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
2: बाबा चांडियो
0: जी जी महिरबानी मिठनि माण्हुनि खे भली कार कुर्ब तव्हांजा जी जनाब ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे ओके त पोइ कॉल मिस कॉल थी वई मिस कॉल न करियो कॉल करियो कॉल करियो जानी कॉल करियो ओके ॾिसंदासीं कॉल में हाणे कंहिंजी कॉल आहे ॾिसंदासीं हलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब ऐं किथां खां मोहम्मद मलिक मोहम्मद बलोच साहब थरपारकर मिठी खां भलीकार
3: तव्हांजूं महिरबानी लख तोरा
0: अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे

0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मोहब्बतूं मिठा माण्हू प्यार ऐं पंहिंजा ऐं पंहिंजा अलाह हाफ़िज़ प्यार ऐं पंहिंजा ऐं पंहिंजा रंग विखेरींदड़ समूरा दोस्त जिन जूं कालूं लॻनि पियूं महिरबानी। हाणे ॾिसंदासीं त असां गॾु कॉल ते केरु आहे त पोइ ॾिसूं था कॉल। हलो अस्सलाम वालेकुम जी, केरु साहब ऐं किथां खां? जी साईं हिकिड़ो दफ़ो नालो रिपीट करियो। छा हाल आहे साईं? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? अलाह पाक जा अहसान आहिनि। तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे?
1: पंहिंजो पुटु आहे नंढो साम कान ईंदड़ो।
0: जी जी
1: अब्दुल वहीद ईंदड़ो, अजमेर ईंदड़ो, मुंहिंजो सौटु आहे सईद ईंदड़ो, सजादु काबिल ईंदड़ो।
0: जी जी
1: जेके दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। तव्हांजो प्रोग्राम असां रोज़ ॿुधंदा वरी शौक़ सां।
0: महिरबानी महिरबानी मिठा माण्हू। थैंक यू थैंक यू, ख़ुशि हुजो।
1: अलाह
0: अलाह हाफ़िज़।

0: وعلیکم السلام.
1: केर साहब है किथा का?
0: शिकागो का जमालिन भयुन साहब.
1: जी जी छाल साईं खुश आयो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र आ ता खुश आ खैर ने.
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहां जी दुआ लगी पई आ आवा सके भी केर भी बुदे.
0: हां सा सा करियो इंदादला भयो निमतला भयो अब्दुल्ला भयो फारूक मीरानी सोरा खान मस्तो जेका बाद खा
1: वालेकुम असलाम मोहब्बतूं साईं मोहब्बतूं लख थोरा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू खुश.

0: हमारी कॉल पे कह रहा है हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी केर साहब है कितना कहा
1: इरफान अली थे वो गुलाबी संगत खबरी बेटा ताल का साले पटका।
0: क्या हाल है इरफान अली थे वो साहब खुश आयो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस साहब बिल्कुल ठीक ठाक आयो। तां बुधायो की आयो ठीक आयो
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सही एहसान है अवां सके भी केर पे बुदे
1: हाने हाने रेडियो के ऑन कयो सी ए तवां जो आवाज बुदो सी असा के दी तो याद न होयो पर असा के चक होयो तो मतलब तवां जो अचो अल्हम्दुलिल्लाह काल भी मिली वई वदी मेहनत सा अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हम काल मिली वई
0: मेहरबानी मिठा मानो मेहरबानी हर सूमर ही अंगारे ते शाम जो 5 बजे का 7 बजे तई अवां सा गड हुंदा से
1: बिल्कुल अना तो सागो ही टाइम आए ना तवां चे पे खमस पे बींद चाहे वो पेरी तारीख का पो
0: जी न खमीस ते मुजो नेटवर्क ते प्रोग्राम ना है हुंदो वो सिर्फ मातली स्टेशन दे हुंदो आ।
1: हां चलो असा त मातली स्टेशन करे कने इंदी आ है टाइम सागो ही आए अगर जेकर ने चा बचे त असा बुझी सको ता तांगे
0: न रात जो हुंदो 7 खां 9
1: चलो असा कोशिश कंदा से भले न बुदो त बस शामिल थन दी कोशिश कंदा से
0: तां दे प्रोग्राम कंदे मिठा मानो असन एप ते ता बुदी सको ता कोप चैनल को बार जे तांगे पसंद है ते ता गूगल ते सर्च कंदो GFM88 रेडियो नेटवर्क असन जो ठई स्टेशन ताए सामू हैं जेके क्लिक कंदो वो आरजे वाली हाजिर में
1: तमाम तमाम सुठा आरजे आयो ए तमाम कंपेयर थी कर रहे रेडियो पाकिस्तान जा जेको भी रेडियो पाकिस्तान पे कम करे प्राइवेट स्टेशन पे इंदो आए ना त उनी जो अंदाज प्रोग्राम करण जो डाडो प्यारो हुंदो आए।
0: मेहरबानी मोहब्बत इन ता जो साईं मेहरबानी अवां सके बे केर पे बुदे
1: सलाम सिस्टर मिसिस अली ए सिस्टर फौजिया फरजाना सिस्टर दुआ खान राय सुमरो मंता सुमरो हुसैन बगिस्तो हाफिज गुलाम अहमद सांबल बचल जमानी नजीर मंगरियो ए अब्दुल्ला पंगवार जेके दोस्त बंदा सबनी के इरफान अली से बारा फड़ सर सलाम
0: मोहब्बतूं थैंक यू सर लखथोरा लखथोरा
1: अल्लाह
0: फैज खुश हो जो आवाज हो जो थैंक यू मिठा मानो तमाम घणे मोहब्बत ओके जनाब इरफान अली थेबो साहब सा कॉल ते हाल अहिवाल थियो हाँ हाल अहिवाल करण लाइ कंहिंजी अचे थी कॉल ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम यूनुस भाउ छा हाल ख़ुशि ऐं ख़राब
0: अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां
2: सर नोटो थर पार्क मां रामचंद कुमार कोहली
0: रामचंद कुमार कोहली साहब अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे
2: दोस्त सब बुधन पिया जेके सब नाला खणी सभिनी जो कर्ज़ थी विया आहियूं दिलीप कुमार ॿुधे पियो चोवन कुमार रुस्तम पवार मलक मोहम्मद बलोच पिया लुंद गुलाब गुल जेके समाज ॿुधनि पियो सिक भरियो रुस्तम पवार ॿुधे
0: महिरबानी भला कर्ज़ लाहिण लाइ मुंहिंजो शो हथ आयो आहे छा
2: बस मूंखे यादि करण तव्हांखे यादि करण नाला नथा वठो
0: नाला वठण लाइ तव्हां वटि मोबाइल पई आहे मुंहिंजे शो खां पोइ कॉल करे सभिनी सां कर्ज़ लाहिजां बाक़ी कर्ज़ लाहिण लाइ ही ग़रीबाणू शो जंहिंमें आहिनि ई को 30-35 मिंट जंहिंमें
2: ॿुधो सर हिकिड़ो अर्ज़ु मुंहिंजो नंढिड़ो इहो आहे त अव्हांजो प्रोग्राम जॾहिं थिए थो न वींदड़ वसकारे में ईंदड़ सियारे में तमामु असांखे प्यारो लॻंदो हक़ीक़त करे असीं महीना इंतज़ार आवाज़ूं कंदा आहियूं
0: महिरबानी मोहबतूं आहिनि तव्हांजो साईं
2: इहो दोस्तनि जी हुजतूं आहिनि सभु अवांजी
0: बिल्कुलु कुर्ब कुर्ब लख थोरा जी जनाब शॉर्ट ब्रेक आहे मां इजो वापसि पियो अचां
3: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
4: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Sindh ki ho to awaaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 FM 88 network. Sindh ki awaaz.
4: Sona sirf zevar nahi har ghar ki amanat hoti hai. इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत व जवाबित लागू हैं

0: जी जना वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे शो में सिंधी डी जी शाम में यूनुस बकारियो सलाम ऐं आख़िरी 15 मिंट कॉल ते केरु हूंदो न लाइ ॾिसी था तूं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: साईं केरु साहिब ऐं किथां
1: खां
0: जी जी छा हाल आहे ख़ुशि आहियो अलहमदुल्ला तव्हां सां करे केरु पियो ॿुधे जी जी तव्हांजे दोस्तनि खे सिक भरियो सलाम मिठा माण्हू महिरबानी मोहबतूं मोहबतूं ख़ुशि हुजो आबाद हुजो सो जनाब कंहिंजी आहे कॉल ॾिसी था वठूं ऐं पुछूंसि था हाल ऐं अहिवाल हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: केर साहब ऐं किथां खां
2: हेलो
0: केर साहब ऐं किथां खां केर साहब ऐं किथां खां
2: सिकर जवल खां बाबर चांडियो थो ॻाल्हायां
0: महिरबानी बाबर चांडियो साहब थैंक यू ख़ुशि हुजो अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी महिरबानी महिरबानी मिठा माण्हू महिरबानी थैंक यू ख़ुशि हुजो ऐं आबाद हुजो जी जनाब साहिब ऐं आवाज़ साथ में ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे त कॉल अची चुकी हिकड़ी वधीक ॾिसंदासीं कॉल ते असां गॾु केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
3: हलो
0: वालेकुम अस्सलाम
3: सर खीतर जमल खां फहीम चांडियो सर
0: जी जी छा हाल आहे साईं ख़ुशि आहियो
3: साईं ख़ैर अलहमदुल्ला दुआ तव्हां ख़ुशि आहियो टेट तबियत सही आहे
0: अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
3: साईं मुंहिंजो हिकिड़ो अर्ज़ु आहे
0: जी अर्ज़ु न हुकुम कयो
3: साईं अॻे प्रोग्राम में कुझु असां खीतर जबल आर लाइ शिकायतूं पिया माण्हू कनि त खीतर जबल आर कालियूं लॻनि थियूं कहिड़े हिसाब जे करे साईं हर कंहिंजी महिनत ईअं न आहे
0: असां त शिकायत न ॾिसो असल में तव्हां सभिनी जो आवाज़ बि हिकु जहिड़ो तव्हां सभिनी जो अंदाज़ बि हिकु जहिड़ो ख़बर कोन थी पवे त साॻियो हमरा नालो मटाए त कोन पियो ॿुधाए माण्हू इन करे शिकायत पिया कनि हाणे हिकिड़ो त माना टोटल कालूं लॻियूं 100 जे मञा जेकॾहिं 80 कालूं अव्हां जूं आहिनि खीरथर वारनि जूं त ॿिया वीचारा रुली विया आहिनि सभु हलो आवाज़ अचे पियो अच्छा आवाज़ घटिजी वियो ओके जनाब असांखे का बि शिकायत कोन्हे शिकायत या त डबल कॉल न करियो इन सां ॿिए जी हक़ तलफ़ी थिए थी ओके ॾिसंदासीं त केरु आहे असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम आवाज़ अचे पियो आवाज़ कोन पियो अचे

0: ॾिसंदासीं त हाणे असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे? हैलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां?
1: कश्मीर खां पठाण खान पटके वारो।
0: छा हाल है साईं? खुश आयो पठाण खान पटके वारा साहब, भलीकार?
1: खैर खैर, महिरबानी। मूं तव्हांजो प्रोग्राम सही ॿुधा थो, हेॾे दोस्त ॿुधाए थो, पाण वटि हिन ते रेडियो मुंहिंजो न आहे।
0: अच्छा, छो भला हेॾा वॾा पुराणा लिसनर आहियो, रेडियो छो भला केॾां वियो रेडियो?
1: हा, रेडियो रखियल सर, सेल न अथसि न।
0: अच्छा, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा, तबियतूं कीअं आहिनि?
1: खैर खैर, तबियत सर, महिरबानी।
0: हा हा, अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे। तव्हां पठाण खान पटके वारे साहब ऐं अव्हांजे दोस्तनि जूं दुआऊं आहिनि। अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: हा, अलाह तव्हांखे शाद आबाद रखे हमेशह। अव्हां सां गॾु दोस्त आहिनि, शौकत जेकरणी आहे, रामत जेकरणी आहे, ॿ टे दोस्त, हिते पोटो कोसो, उन खां अलावा नूर अहमद ज़ातणी आहे,
0: जी
1: पोड़ा खान मरी, जेका किरी करे ॿुधनि था, खोड़ सलाम मोहबतूं।
0: तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हां जूं। तव्हां पहिरियों दफ़ो कॉल कई, सच पुछो दिलि ॾाढी ख़ुशि थी।
1: जी सर, जी बिल्कुलु बिल्कुलु, इनशाला मां कॉल कंदो रहंदो, अलाह ख़ैरु कंदो सर।
0: कुर्ब साईं,
1: वधायो सर।
0: कुर्ब साईं, ख़ुशि हुजो।
1: महिरबानी, मोहबतूं मोहबतूं
0: पहिरां, मोहबतूं मोहबतूं। जी जनाब, पठाण खान पटके वारे साहब जी कॉल लॻी वई ऐं वाह वाह थी वई। ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते कहिड़ो। असां वटि बाक़ी आहिनि नव मिंट, छह लॻी एकवंजाह मिंट थिया आहिनि। नवनि मिंटनि जो बाक़ी साथ, साज़ ऐं आवाज़ जो साथ, यूनिस बकारी जे वञण जो साथ। ओके जनाब, कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम अदा।
0: केरु साहब ऐं किथां खां? छा हाल है कुर्बान अली खासकेली साहब? खुश आयो, ठीक आयो, चंगा भला, मतारा जोड़, बार बच्चा टंगड़े में? हाँ, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? वालेकुम असलाम। भला देर सां कॉल छो लॻी आहे तव्हांजी? किथे गैर हाज़िर हुआ, केॾा घुमण विया? बहरहाल सॉरी था चऊं जेकर अहिड़ी ॻाल्हि थी वई। त ओहो, चलो चलो, मां ॾिसां थो, कोशिशि कयां थो त असांजी नशरियात तव्हां ताईं पहुचे। नशरियात कावड़ न कर, जल्दी जल्दी कुर्बान ख़ासि केली वटि पहुच, ठीकु आहे? नशरियात खे चई छॾियो आहे। कुर्ब कुर्ब कुर्ब कुर्ब कुर्ब कुर्बान ख़ासि केली साहब, हिन गाने में तव्हांखे कुझु चइजे थो, ॿुधो वरी ॿुधो, हाणे ॿुधो भला।

0: जी तू थोरो ख्याल कंदो कर न कैसा गाल कंदो कर कॉल ते दिसु था केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केर साहब है किथा खा
1: मेर अली कलोड़ो कंडियारे खा
0: छा हाल है कलोड़ा साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला
1: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है ता बुदायो
0: अल्हम्दुलिल्लाह वहां जी दुआ लगी पई है वहां से कर बियो केर पे बुदे
1: मुझो बाबा मामा अमीन कलोड़ो निसार कलोड़ो अफजल कलोड़ो जेते भाईर धनी बुदन दा उन जे सबने के सलाम छोड़े टाइम थोड़ो आ
0: किरोड़े कुर्ब मिठा मानो किरोड़े कुर्ब ता जा
1: जी ठीक है
0: मोहब्बतूं मोहब्बतूं कलोड़ो साहब यकीनन वक्त जी नजा

कॉल वधीक अटेंड करे था वटु नासी कॉल ते के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब कॉल ते आवाज दें पे अची इन जे करे कॉल ड्रॉप करनी पेजी वही मजबूरन

0: थोरो ख्याल कंदो
1: आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क अवां बुधो पिया मातली मिर प्रकाश मटियारी सकरंड मेहरापुर मोरो लड़काणू आई सखर के GFM 88 रेडियो नेटवर्क जहन जो नारो आहे सिंध जो आवाज कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब है किथा खां
2: जकबाबाद खां शौकत अली जखराणी हलाए तो
1: शौकत अली जखराणी साहब खुश आयो ठीक आयो
2: पैर लगो पे तो खुश आयो
1: अल्हम्दुलिल्लाह तवा सा केर भी केर पे बुदे
2: रस्तम पावर आए फकीर मोहम्मद जलालानी नार नगर जमाली
1: जी जी
2: नजीर अहमद नगर जेके दोस्तों सबन के सलाम
1: वालेकुम असलाम तमाम घणी महिरबानी लख थोरा जी थैंक यू ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
3: हलो
1: अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम छा हालु आहे सर
1: शुक्र आहे केरु साहब ऐं किथां खां
3: पासे गुलाम मंसूर चानियो थो ॻाल्हायां
1: जी छा हाल आहे चांडिया साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
3: चांडियो आहे मुंहिंजो भाउ
1: जी जी
3: मुंहिंजो भाउ असद ख़ान चांडियो मंजीत चांडियो
1: महिरबानी मिठा माण्हू थैंक यू थैंक यू वेरी मच लख थोरा टाइम घटि आहे मौज़ूस ख़वातीन हज़रात थोरो थोरो टाइम वठी कॉल करे सघो था 0334352578 असांजो नंबर ऐं हुन नंबर ते ॾिसंदासीं केरु हूंदो असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलाम केरु साहब ऐं किथां खां जी जी अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी थैंक यू मिठा माण्हू महिरबानी ओके लाफिज जी जनाब साधे आवाज़ जे साथ में आख़िरी लम्हात छो जा ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम
1: केरु साहब ऐं किथां खां
4: समीर चाणी थो ॻाल्हायां कीकर जे अलावा
1: जी छा हाल आहे ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो
4: अलहमदुल्ला साईं तव्हां ख़ुशि आहे ॿियो ख़ैरु आहे
1: अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
4: मुंहिंजा दोस्त आहिनि कुझु इम्तियाज़ चांडियो इमरान चांडियो अदनान चांडियो ज़ुल्फ़िकार चांडियो ऐं बदर चांडियो
1: महिरबानी लख तौरु

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कोलन एफ जैक्सन जी की आदत में वफद GHQ को तो ISPR पहुंचे मुलाकात में गडियल दिलचस्पी पाकिस्तान जी हिमायत इलाकाई सिक्योरिटी अफगानिस्तान जी सूरत हाल ए कमीशन जे कम बाबत मामलन ते गालियों कई हुई फील्ड मार्शल अफगानिस्तान तकरार सिक्योरिटी सूरत हाल ए उन जे असरन ते मौकिफ पेश कंदे पाकिस्तान के दरपेश चैलेंजेस का आगाह कयो अमरीकी वफद अफगान तकरार दौरान पाकिस्तान जे किरदार ए कुर्बानन जो एतराफ कंदे इलाकाई अमुन इस्तेहकाम में पाकिस्तान जे किरदार जी साराह कई
4: मगर ये सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा ये मैं आपको कहता हूँ अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा उसकी टीमशिप भी नहीं चलेगी इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा ये कहते हैं कि मैं और खतरनाक बन जाऊंगा मैं आज इसको इस केपीके से और इस पिशावर से ये कहना चाहता हूँ कि अफरीदी साहब आप तैयार रहे जेल के अंदर होंगे वही सलाखों के अंदर होंगे जो लूट मार आपने किए उसका हिसाब किताब आपको देना होगा जो आईनी खिलाफ वर्जी आपने किए और कर रहे हैं उसका हिसाब किताब आपको देना होगा जो आपने पहले से वही नौ मई और जो भी वाकयात किए उसका हिसाब किताब भी आपको देना होगा
3: खैबर पख्तूनख्वा में वो वजीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लगंदी वफाकी हुकूमत की मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल कानून वारे वफाकी वजीर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ चयो आहे त केपीए में इमरजेंसी लगण घुर्जे ऐं लगंदी बि आइन में घुर्बल ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं त सभु कुझु थी वेंदो इमरजेंसी बाबति आइन वाज़े आहे वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम चयो आहे त केपीए में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि केपी में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न पर वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी न हलंदो

0: बैठ के बरक्स कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहां पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस कुर्सी की। जो मेरा मौका पहले दिन था जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ, हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है, इसमें हम सब की भलाई है।
1: गवर्नर राज जी धमकिन खान डिजण वारो नाया कुर्सी खातिर पंजी नजरिए ता हथ न खणंदुस। केपी जे वडे वजीर सोहेल आफरीदी चयो आहे तवामी मैंडेट खिलाफ केर भी नथो वञी सघे, मुखे को भी फिक्र न आहे, रियासत के पंजी पॉलिसी तब्दील करण घुर्जे। पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा चयो आहे ता लॉन्ग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत के वक्त डिनो, पंजनि फैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो।
2: ये आपकी जो मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आपको अब ये फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है। इट्स एज क्लियर एज दैट।
1: पीटीआई के पाकिस्तान ए अफगानिस्तान मां का एक जी चूंड करनी पवंदी। सोहेल आफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर भी नाकाम थी वियो आहे। समावारे फाकी वजीर अता ताड़ चयो आहे त सूबे अंदर तबाही थी चुकी।

0: दाद फरियाद न थींदो आहे, किथे बि उनजो सदारत न थींदो आहे।
1: नारियल कल्चर जेको आहे त हिकु किरोड़ रुपियो भूंगो तलब करनि था, इहो किथां जो कानून आहे।
2: अॻे कतल थींदा, हाणे अरवाह करे मुख़्तलिफ़ मुतालबा कया वञनि था।
3: हथ सच लिखण वारा सहाफ़ी उन्हनि खे पंहिंजो सच न वणियो, इन जे करे असांजे सहाफ़ी बेबाक साहबीअ खे अगवा कयो आहे।
4: जेको बेबाक साहबी आहे अज़ीम शाह, हुनखे फुल फोर आज़ाद सिंध पुलिस किथे निंड में सुठो पियो आहे, फुलफा चवणो थो पए। असां इन अगवा जी सख़्त मज़म्मत था कयूं।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थोरी, ऐं औरतन ऐं ॿार जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
11: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो।

0: रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
0: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलो वेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतन के मखसूस बीमारियों हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: देखेंगे।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी शिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, कोई सलाखों के अंदर होंगे।
4: खैबर पख्तूनख्वा में वडो वजीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लगंदी, वफाकी हुकूमत जी मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ चयो आहे त केपीए में इमरजेंसी लगण घुर्जे ऐं लगंदी बि। आइन में घुर्बल ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं, सभु कुझु थींदो। इमरजेंसी बाबति आइन वाज़े आहे। वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम चयो आहे त केपी में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि। केपीए में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो। गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सोहेल आफरीदी न हलंदो।
5: डेढ़ के बरस कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहां पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस कुर्सी की। जो मेरा मौका पहली दिन था, जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है, वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ। हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को, इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है, इसमें हम सब की भलाई है।
4: गवर्नर राज जी धमकियों का डिजण वारो ना आया, कुर्सी खातिर पंजी नजरिए तां कदें भी हथ न खणंदस। केपी जे वडे वजीर सोहेल आफरीदी चयो आहे त अवामी मैंडेट खिलाफ़ केर भी नथो वञी सघे, मूंखे को भी फिक्र नाहे, रियासत खे पंहिंजी पॉलिसी तब्दील करणु घुर्जे। पीटीआई अॻवान सलमान अकरम राजा चयो आहे त लॉन्ग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत खे वक़्तु डि॒नो, पंहिंजनि फ़ैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो।
6: और ये आपकी जो मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आपको अब ये फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है। इट्स एज़ क्लियर एज़ दैट।
4: पीटीआई के पाकिस्तान अफगानिस्तान मां कंहिं हिक जी चूंड करणी पवंदी। सोहेल आफरीदी इंतज़ामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर बि नाकाम थी वियो आहे। सुदसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त सूबे अंदर तबाही थी चुकी आहे। वफ़ाक़ केपीए खे अरबे रुपया ॾिना, ॿुधायो वञे त पैसा काॾे विया आहिनि। मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी जो चवण हो त केपी हुकूमत ॿुधाए त संदन अफ़गानिस्तान बाबति रवियो नरम छो आहे। सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफ़गानी मुलविस आहिनि। लॉन्ग मार्च बाबति पार्टीअ जी तयारी न हुई। लॉन्ग मार्च जी तारीख़ तब्दील थियण सां पार्टी कमज़ोर थी आहे। केपी जे अॻूणे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर चयो आहे त सूबे में वॾे वज़ीर जी रिट न हुअण सबबि वज़ीरनि, मेंबर्स ऐं कारकुननि खे खंभियो पियो वञे। बानी जे चवण ते वॾे वज़ारत छॾी ॿीहर हुकुम मिलियो त ॿीहर वॾो वज़ीर थी सघां थो।
7: असां आलाद कयूं था आई जी सिंध खां अपील था कयूं, फिल फोर जेको आहे अजीत चाल खे आज़ाद कयो वञे।
8: अॼु असांखे धमकियूं मिली रहियो आहे, अॼु असांखे अगवा कयो पियो वञे।
9: असां बि जेको आहे मुआशिरे जो आवाज़ आहे, मज़लूम कॾहिं हुन जो को दाद फरियाद न थींदो आहे, किथे बि हुनजो सदारत न थींदो आहे।
10: नारियल कल्चर जेको आहे हिकिड़ो रुपयो भूंगो तलब करनि था, इहो किथो जो कानून आहे। अॻे कतल थींदा, हाणे अगवा करे मुख़्तलिफ़ मुतालबा कया वञनि था।
11: हथ सच लिखण वारा साथी उन्हनि खे पंहिंजो सच न वणियो, इन जे करे असांजे साथ बि बेपाक साहब जेके अगवा कयो आहे,
12: जेको बेपाक साहब बि आहे अज़ीम ख़्याल, हुनखे फुल फोर आज़ाद सिंध पुलिस किथे निंड में सुठो पियो आहे, अफ़सोस सां चवणो थो पए। असां हिन अगवा जी सख़्त लपेटूं मज़म्मत था कयूं।
4: केटीएन न्यूज़ खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे अगवा खे ॿ ॾींहं थी विया। पुलिस मुगवी साफ़ीअ खे बाज़ियाब कराइण में मुकमल तौर ते नाकाम बणियल। पुलिस जी कार्रवाई बि ॻाल्हियुनि ताईं महदूद। अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी लाइ अमली क़दम न खयो। अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी लाइ कलम धरणी सरापा एहतजाज, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, नौशेरो फिरोज़, गम्बट, उॿावड़ो, मीरपुर माथेलो, ठरी, मीरवा, चक, बख्श

0: से जुड़ा।
1: GFM88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-2525-786।
3: जी हा, 3135-2525-786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीट फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086313।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 9 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे KTN नेटवर्क पर KTN News.
3: कॉन्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म है, वो जब रिक्वायर करेगा तो ये सारी चीजें.
4: मगर ये सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ. अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी सीट शिफ्ट भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा. आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, वही सलाखों के अंदर होंगे.
5: केपी में वजीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लगंदी, वफाकी हुकूमत जी मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल. कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ चयो आहे त केपीअ में इमरजेंसी लगण घुर्जे ऐं लगंदी बि. आइन में घुर्बल ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं त सभु कुझु थींदो. इमरजेंसी बाबति आइन वाज़े आहे. वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम जो चवणु हो त केपी में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि. केपी में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो. गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी न हलंदो.
6: डेढ़ के बरस कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई भी अफोर्ड कर सकता है. अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहां पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, तो मुझे अपने नजरिए से हटाए. मुझे कोई फिक्र नहीं है इस कुर्सी की. जो मेरा मौका पहले दिन था जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा. अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ. हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को, इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ. इसमें पाकिस्तान की भी बुलाई है, इसमें हम सब की बुलाई है.
5: गवर्नर राज धमकियन खां डिजण वारो न आहियां, कुर्सीअ ख़ातिर पंहिंजे नज़रिए तां हथ न खणंदुसि. केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी चयो आहे त अवामी मैंडेट ख़िलाफ़ केर बि नथो वञी सघे, मूंखे को बि फिक्र न आहे. रियासत खे पंहिंजी पॉलिसी तब्दील करणु घुर्जे. पीटीआई अॻवान सलमान अकरम राजा चयो आहे त लॉन्ग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो, पंहिंजनि फ़ैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो.
7: ये आपकी जो मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आपको अब ये फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है. इट्स एज क्लियर एज दैट.
5: पीटीआई के पाकिस्तान ऐं अफगानिस्तान मां कंहिं हिक जी चूंड करणी पवंदी. सुहेल आफरीदी इंतज़ामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर बि नाकाम थी वियो आहे. सुतसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त सूबे अंदरि तबाही थी चुकी. वफ़ाक़ के पीअ खे अरबे रुपया ॾिना, ॿुधायो वञे त पैसा काॾे विया आहिनि. मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी जो चवणु आहे त के पी हुकूमत ॿुधाए त संदन अफ़गानिस्तान बाबति रवियो नरम छो आहे. सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफ़गानी मुलविस आहिनि.

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
0: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130-86-3163
1: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2311-25-25-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबन ते मुर्का विखरल दिलन में आ बे आई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ। कराची खां कश्मीर कींझर खां कारूंझर ताईं सुहिणी सिंधवासिन खे आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे। प्रोग्राम दिल जी गाल सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं अव्हां ॿुधी रहिया आहियो जीए एफएम नेटवर्क। GAFM नेटवर्क ऐं दिल जी गाल जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानायतनि महबूबनि दिलरुबा दोस्तनि प्रिय प्यारनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामती।

हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं, अव्हां जी दिलनि मां धिकारिया विया हूं। हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं, अव्हां जी दिलनि मां धिकारिया विया हूं। असां पन वण जो हुआसीं दुनिया में, असां पन वण जो हुआसूं दुनिया में, वरियो वाओ पल सां बुहारिया विया हूं। विसारे छॾियो लोक आहे त छाहे, विसारे छॾियो लोक आहे त छाहे, मिटी माउ खां पर संभारिया विया हूं, हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं। असां हेठ पंहिंजा विछाणा विछाया, असां हेठ पंहिंजा विछाणा विछाया, वरी बि अंगण तां उथारिया विया हूं। असां हेठ पंहिंजा विछाणा विछाया, वरी बि अंगण तां उथारिया विया हूं। अञा साह आहिनि नसारियो अमा था, अञा साह आहिनि नसारियो अमा था, अॻे मौत खां ॼण त मारिया विया हूं, हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं। अञा साह आहे नसारियो अमा था, अॻे मौत खां ॼण त मारिया विया हूं, वरी शाहिदा वहम दिल में उथियो आहे, वरी शाहिदा वहम दिल में उथियो आहे, लॻे थो अव्हां खां पुकारिया विया हूं, हयातीअ जे हूंदे बीमारिया विया हूं, अव्हां जी दिलनि मां धिकारिया विया हूं।

दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि, सभिनी प्रिय प्यारनि जे नाउ ही ख़ूबसूरत गीत सनम मारवी जे आवाज़ में का सार त लहबी आहे। अचो त गॾिजी गीत खे एंजॉय कयूं।

मुठी माठ आहे जुबान सां त पंहिंजी, मुठी माठ आहे जुबान सां त पंहिंजी, अखियुनि खे अखियुनि जा इशारा सॾनि था। वञी दूर ॾाढो वसायो अझो थी, वञी दूर ॾाढो वसायो अझो थी, मगर तोखे ही पूह पारा सॾनि था, निगाहूं सॾनि थियूं, नज़ारा सॾनि था। वञी दूर ॾाढो वसायो अझो थी, मगर तोखे ही पूर पोह मगर तोखे ही पोह पारा सॾनि था। अवां सूंह जो समुझ आयो ओ साईं, अवां सूंह जो समुझ आयो ओ साईं, अवां खे सिकायल उञारा सॾनि था, निगाहूं सॾनि थियूं, नज़ारा सॾनि था। ॿुधी दाह तो कोन कंहिंजी बि दिलि जी, ॿुधी दाह तो कोन कंहिंजी बि दिलि जी, ख़ुदा साह तोखे दुखारा सॾनि था। वञी तो वसायो शहर शोर वारो, वञी तो वसायो शहर शोर वारो, वरी वर तोखे ॻोठ वारा सॾनि था। वञी तो वसायो शहर शोर वारो, वरी वर तोखे ॻोठ वारा सॾनि था, छॾे कीअं फितरत वञा शाहिदा मां, छॾे कीअं फितरत वञा शाहिदा मां, सिंधूअ जा सुभागा किनारा सॾनि था, निगाहूं सॾनि थियूं, नज़ारा सॾनि था, घणी देर खां प्यार प्यारा सॾनि था।

दोस्तो वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ वरी वरंदासीं। ॿुधंदा रहो जीए एफ एम नेटवर्क।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के लहजे मनी के लतीफ चहे बर्तन के हमारी वो चाहे बोल रहे बचे बर्तन के हमारी वो चाहे बोल रहे गलती बचे बर्तन की मारी बर्तन की मारी
1: प्यारा अवां प्रोग्राम बुधण खां बिना कॉल कंदा ईअं ई अंदाज़े मूजिब
2: सर अंदाज़े में मां नाए पर शुरू कंदो कॉल करण तो खां जो अटेंड करण जो
1: अलग से मैं नव 15 ते प्रोग्राम शुरू थिंदो आ 9:30 सो कॉल अटेंड कंदा दोस्तन जा नाम शामिल करण चाहिदो
2: जी जी
1: जी क्या
2: सुरेश कुमार
1: जी
2: जयराम दास
1: जी
2: और निर्भर दास
1: जी
2: मकन कुमार
1: जी
2: और प्रेमी सागर
1: प्रेमी सागर और नालो बुधल बुधल लगे तो आ जा ठीक आ आवा सा वरी करें कचहरी थी दी न्यूज ब्रेक ते वनन खाग में एकड़ी फरमाइश पूरी कंदा से बड़ी मेहरबानी इन सभी महबूबन के मुझे तरफा भी सलाम नमस्ते हक मौजूद
2: प्रोग्राम
1: जी प्यारा
2: जिंदगी गुलजार है
1: ठीक बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी थैंक यू सर लव
2: ओके
1: बेहद मजो अची रहो अवां सां गाल बोल करे अवां जी शायरियूं बुधे अवां जी दिल जी गालियूं बुधे ऐं प्लस में अवां खां गीत गज़ल वायूं बि बुधी रहिया आहियूं सो वक़्तु आहे हींअर हिकड़े फरमाइश जो ऐं फरमाइश सभ खां पहिरीं थी जलाल चांडी जे आवाज़ में को बि गीत त पोइ अवां सभिनी

महबूबन जे नाव स्पेशली जिन दोस्त फरमाइश कई उन ऐं हुन जी सॼी संगत जे नाव जलाल चंडी जी आवाज़ में ख़ूबसूरत गीत कोन बच सां दर्द ते ॾे विच रो रो दम ॾे सां अचो त गॾिजी गीत खे इंजॉय कयूं।

देसा बस मरवई अस सूरत तू सादी सियाल वाके मैं एक दफा देखा बस मरवैसा वापस वैसा कौन वतन ते तलब तड़ी विच तेका बस मरवैसा कुछ न शबीर मचई वैसा सखना सिर उड़ाने सा।